0: 113 नागपूर गरीब रथ एक्सप्रेस 9:20 1219 आझाद हिंद एक्सप्रेस 9:50 1239 सेवाग्राम एक्सप्रेस 5:45 1260 जबलपुरामी सुपर फास्ट एक्सप्रेस 6:25 या सर्व रेल्वेगाड्या आपल्या नियोजित वेळेस अपेक्षित आहेत. 12214 यशवंतपूर दुरांतो एक्सप्रेस 2:25 12266 निजामुद्दीन सिकंदराबाद दुरांतो एक्सप्रेस 5:35 12295 संघमित्रा एक्सप्रेस 8:35 12405 गोंडवाना एक्सप्रेस 12:40 12410 गोंडवाना एक्सप्रेस 8:20 12615 ग्रँड ट्रंक एक्सप्रेस 11:25 12616 ग्रँड ट्रंक एक्सप्रेस 10:15 12622 तामिळनाडू एक्सप्रेस 1:05 आणि 12626 केरला एक्सप्रेस 11:45 या सर्व रेल्वेगाड्या आपल्या नियोजित वेळेस अपेक्षित आहेत. 12724 तेलंगणा एक्सप्रेस 7:10 ही गाडी 47 मिनिटं उशिरा धावती आहे. 12809 हावडा मेल 11:15 गाडी आपल्या नियोजित वेळीच नागपूर स्थानकावर पोहोचेल. 12860 गीतांजली एक्सप्रेस 7:40 ही गाडी 47 मिनिटं उशिरा धावती आहे. 20821 पुणे सिकंदराबाद हमसफर एक्सप्रेस 1:20 गाडी 10:38 उशिरा धावती आहे. अधिक माहितीकरिता प्रवाशांनी दूरध्वनी क्रमांक 139 संपर्क साधावा. रेल्वेगाड्यांसंबंधीच्या सूचना आता संपल्या. आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे. 512.8 मीटर्सवर आपण ऐकत आहात आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्राचे कार्यक्रम. श्रोते हो काही क्षणातच म्हणजेच ठीक 6 वाजता दिल्ली केंद्रावरून दिल्या जाणाऱ्या हिंदी बातम्या आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत. काही क्षणांची प्रतीक्षा.
1: जया भारती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया. दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की. विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है.
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया. कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है.
3: ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी इन द रीजन.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है. राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध है. भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है. समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे. श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है.

0: नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए दो उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर्सवर आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून श्रोते हो आम्ही बोलत आहोत। सकाळची 6:05 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम अर्चना भक्ती संगीताच्या। या कार्यक्रमात श्रोते हो सुरुवातीला ऐकूयात प्रल्हाद शिंदे यांनी गायलेली अनंत यांची ही गीतरचना।

0: शत अष्टनवति मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमति भविष्यति। श्री गोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः श्रमिकेभ्यः महिलाभ्यः कृषकेभ्यः मत्स्यजीविभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्ण रूपेण लाभो भविष्यति।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: of our shared future.
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षताम् कृतवन्तौ। श्री सिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉक्टर संवित पात्रावर्यः नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
3: मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर्सवर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। सकाळचे ठीक 7 वाजले आहेत।

0: रेडिओ संपूर्ण देशाला एका समान सूत्रात बांधून ठेवतो आपल्या सर्वव्यापी परिचयानं.
1: ये आकाशवाणी है. देशातले अनेक रेडिओ क्लब एकत्रित करून 1927 साली IBC अर्थात इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीनं बॉम्बे स्टेशनहून भारतात प्रथम प्रसारण सुरू केलं.
0: नंतर 1930 ला इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस, तर 1936 मध्ये ऑल इंडिया रेडिओ अशी स्थित्यंतर हळूवार गतीनं होत गेली.
1: 1957 मध्ये ऑल इंडिया रेडिओनं आकाशवाणी हे पेटंट नाव धारण केलं.
0: आपली आकाशवाणी जगातील एक मोठी प्रसारण संस्था,
1: बहुजनांना सुखवणारी, त्यांचं कल्याण करणारी आकाशवाणी ज्ञान आणि मनोरंजनासाठी आज तागायत कटिबद्ध आहे.
2: आकाशवाणीची 90 वर्ष सुफळ संपूर्ण.
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है. 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई. क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है.
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है. सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी. आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है.

0: आपण ऐकत आहात आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्राचे कार्यक्रम. श्रोते हो, थोड्याच वेळात म्हणजेच ठीक 8 वाजता समाचार प्रभात आणि 8:15 मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून संक्षेपित करीत आहोत आणि 8:30 राष्ट्रीय मराठी बातमीपत्र आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्रावरून संक्षेपित करू. तर सुरुवात
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे.
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्या खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा.
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा. मुख्य समाचार. म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया. उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला. एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया. और अब समाचार विस्तार से. म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा. दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया. प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया. विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा.
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया. कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है.
4: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई. म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया. 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है. अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है.

0: भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी

0: कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल

0: के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउंग क्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under 18 Asia Cup. Myanmar President Ou Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement, and negotiations are now focused on a few minor issues, commerce and full stops. We have a report.
4: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement BTA. The talks will take place in New Delhi from today and it will last till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator Brendan Lynch. On 3rd of February, both sides announced the framework for the first phase of the BTA. The two sides have proposed to finalize the details of the interim agreement and take forward the negotiations under the broader BTA on multiple areas such as market access, non-tariff measures, customs and trade facilitation, and investment.

0: उसाट्याच्या वाऱ्यासह वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र गोव्यासह गुजरातमध्येही पावसाचा अंदाज आहे, तर ईशान्येकडील राज्यांमध्ये उष्ण आणि दमट हवामान राहील असा हवामान विभागानं म्हटलं आहे. शेवटी पुन्हा ठळक बातम्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष ऊ मिन आंग हाइंग यांच्यात नवी दिल्लीत चर्चा. भारत विरोधी कारवायांसाठी म्यानमारची भूमी वापरू देणार नाही, म्यानमारच्या अध्यक्षांची ग्वाही. भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारातील बहुतांश मुद्दे निश्चित झाल्याची केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची माहिती. आशिया चषक हॉकी स्पर्धेत पुरुषांच्या 18 वर्षांखालील गटात भारताची कोरियावर 4-1 अशी दणदणीत मात. आणि महाराष्ट्र गोव्यासह अनेक राज्यांमध्ये आज पावसाचा अंदाज. आकाशवाणी पुणे केंद्रावरचं प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.
1: मध्यम लहरी 512.8 मीटर्सवर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे. श्रोते हो, सकाळची 8:40 झाली आहेत. आता प्रसारित करीत आहोत ऑल इंडिया रेडिओच्या 90व्या वर्षापूर्तीनिमित्त डॉक्टर विनोद असुदानी यांची सारिका पाठक यांनी घेतलेली मुलाखत.
2: श्रोताओं नमस्कार. आज के कार्यक्रम में मैं सारिका आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ. श्रोताओं, ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल इस उपलक्ष में आज हमने हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित किया है नागपुर के जाने माने बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर विनोद आसुदानी सर इन्हें. और डॉक्टर विनोद आसुदानी सर रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश विषय के प्रोफेसर है. इन्होंने 4 विषयों में एमए भी किया है, इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी. और उसी के साथ उन्होंने इंग्लिश और साइकोलॉजी में पीएचडी भी किया है. आसुदानी सर जाने माने साहित्यकार भी है. 41 किताबें अब तक उनकी प्रकाशित हो चुकी है और वो सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई है. डॉक्टर विनोद आसुदानी सर को 2023 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, जो उनके सिंधी गजल संग्रह के लिए उन्हें मिला है. तो चलिए रूबरू होते हैं डॉक्टर विनोद आसुदानी सर से और जानते हैं उनका आज तक का ये जीवन का सफर कैसे रहा है. डॉक्टर विनोद आसुदानी सर, हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं.
3: बहुत बहुत धन्यवाद. आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जब आकाशवाणी 90 वर्ष का लंबा सफर पूर्ण करके इस पड़ाव पर पहुंची है, तो मुझे भी आकाशवाणी नागपुर के स्टूडियो में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है.
2: जी, हम भी बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं खुद को कि आपसे आज बात करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है. सर, आपके शिक्षण से शुरू करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि आप जन्म से दृष्टिहीन है.
3: जी,
2: तो दिक्कतें भी आई होगी और आपने कैसे ओवरकम किया ये सब हम जानना चाहेंगे.
3: थोड़े में अगर मैं बताऊं तो हम 8 भाई बहन हैं, उसमें से 5 जन्मांध यानी जन्म से दृष्टिहीन है.
2: अच्छा.
3: तो मेरी पहली प्राथमिक शिक्षा तो नागपुर के ब्लाइंड स्कूल में हुई और उसके बाद 8th क्लास के आगे हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम के तहत नॉर्मल स्कूल में जाया करते थे. और उस समय ब्रेल लिपि होती है जिसमें किताबें उपलब्ध होती थी, उन्हें पढ़ करके हम अभ्यास करते थे. और परीक्षा के समय जैसे 10th है या 12th है तो लेखनिक अपने साथ ले जाते हैं. एक राइटर होता है जो हमसे 1 क्लास कम पढ़ने वाला होता है.
2: हाँ.
3: वह हमें प्रश्न पत्र पढ़ के सुनाता है और हम उसको उत्तर डिक्टेशन देते चले जाते हैं. इस तरीके से हम एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं. और हमें पढ़ने का शौक मुझे एकदम बचपन से था. मेरे बड़े भाई डॉक्टर घनश्याम आसुदानी, जो कि आज इंग्लिश के प्रोफेसर हैं स्वयं भी, हम दोनों साथ पढ़ते थे. और हमें एक धुन सवार हो गई कि हमें मेरिट लिस्ट में आना है.
2: जी.
3: और हम 10th में 16th और 17th, घनश्याम जी 16th और मैं 17th मेरिट लिस्ट में आया. ये 1988 की बात है.
2: जी.
3: और भारत में ये पहला अवसर था जब 2 नेत्रहीन विद्यार्थी ओपन मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया हो. तो हमें बहुत अच्छा लगा. हमें लगा कि हम भी बाकी लोगों के बराबर हैं. फिर 12th में हम लोग मेरिट में आए. फिर पढ़ाई का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा. फिर नागपुर यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया और मेरिट सूची में 5वां रहा. एमए अंग्रेजी किया, यूनिवर्सिटी को टॉप किया. एमए हिस्ट्री किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया. ऐसे 4 एमए कर लिए, पीएचडी किया.

0: लोगों का सपोर्ट जरूर रहा है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी है, अब वो जमाना चला गया कि कोई पढ़ के सुनाए हम सुना करते हैं, आजकल स्क्रीन रीडर्स हैं। हाँ। मेरे मोबाइल फोन में भी है और मेरे लैपटॉप में भी है। अच्छा। यदि आपने कोई भी वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके डाल दिया तो वो ऑडियो में कन्वर्ट करके हमें पढ़ करके सुनाता है। अच्छा। तो टेक्नोलॉजी ने काफी कुछ हमारा पढ़ने लिखने का जो मामला था उसे आसान कर दिया है।
1: लेकिन आसुदानी सर, मेरिट में आने का और इतनी सारी पढ़ाई करने का आसुदानी पैटर्न क्या रहा है, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: पहली बात तो हमें रुचि से पढ़ना है। हम यदि बोझ समझ करके पढ़े, यदि कोई बच्चा बोझ समझता है पढ़ाई को, तो वो कितना भी टैलेंटेड हो, टेक इट फ्रॉम मी ऑन द स्टेम पेपर, वो आगे नहीं जा सकता। रुचि एक नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। दूसरा, पढ़ाई को समझ करके पढ़ना है। पढ़ाई सिर्फ हमें नौकरी लेने के लिए है, ये दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। पढ़ाई हमारे जीवन को विस्तार देती है, पढ़ाई हमारे जीवन को समृद्ध बनती है, पढ़ाई हमारे मस्तिष्क को तराशती है, पढ़ाई हमको जीवन के साथ जोड़ती है, जीने का तरीका सिखाती है। इस दृष्टिकोण के साथ यदि कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है तो मुझे लगता है कि काफी आगे तक जाएगा। और इस दृष्टिकोण से ही हम पढ़ते रहे। मुझे जिज्ञासा रहती थी कि इतिहास में क्या हुआ है, भूगोल यानी क्या होता है, विज्ञान में क्या होता है, कैसे अलग अलग फॉर्मूले काम करते हैं। तो वो रुचि के साथ अगर मैंने पढ़ा है तो आज तक भी मुझे बहुत सारी बातें याद है जो मैंने अपने हाई स्कूल में पढ़ी है।
1: हाँ, आप एक बहुत उम्दा स्टूडेंट तो रहे ही है, लेकिन अब आप प्रोफेसर है, तो ये अनुभव कैसा है?
0: मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक रहा, तो इसलिए मैंने टीचिंग प्रोफेशन में ही जाने का डिसाइड किया। और मैं गुजरे 28 वर्षों से रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी, वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज में मैं अंग्रेजी, साइकोलॉजी और सोशल साइंसेस पढ़ा रहा हूँ। आज भी मुझे 28 साल हो गए, पढ़ाते पढ़ाते कभी बोर नहीं होता। मुझे मजा आता है बोलने में, और बोलने का रोज मौका अगर मिल जाए और उसके लिए आपको सैलरी मिल जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है।
1: वाह, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये सब जानकर सर। और आपने पीएचडी भी किया है, हार्ड सब्जेक्ट है आपके, इंग्लिश और साइकोलॉजी
0: जी,
1: उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
0: अंग्रेजी में तो मैंने पहले पीएचडी कर लिया ताकि मुझे जॉब मिल सके, तो वो मेरे और पढ़ने का शौक था, साहित्य में भी शौक था, तो मजा आया। मैंने भवानी भट्टाचार्य के नॉवेल्स पर अंग्रेजी में पीएचडी की, और साइकोलॉजी के प्रति मेरी रुचि बढ़ती चली गई। क्यों, हम जब इस दुनिया में जीते हैं तो इंसानों के साथ बातचीत करते हैं। हाँ। हमारा दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, और साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ आपके आसपास, आपके घर के लोग, आपके दोस्त, आपके अपरिचित परिचित सारे लोगों के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो बहुत कुछ हम लोग समझ पाते हैं। हाँ। क्योंकि हमारा बिहेवियर जो है वो साइकोलॉजिकली गवर्नड है, इमोशन से गवर्नड है, हमारे थॉट्स से गवर्नड है। तो साइकोलॉजी जो है, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी व्यवहार को समझने के लिए साइकोलॉजी से अधिक सशक्त कोई माध्यम नहीं है। और इसलिए मैं साइकोलॉजी के प्रति अट्रैक्ट हुआ और साइकोलॉजी पढ़ी, और मैं एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ आज।
1: और उसके नाते ही आपका आवाज जो है वो बड़ा स्मूदिंग है कानों को सुनने के लिए।
0: ये तो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है कि हम क्या है, आवाज के दुनिया के ही प्राणी हैं। क्योंकि आप देखें कि हम दुनिया को इन आंखों से नहीं देख सकते। हम दुनिया को कानों से सुनते हैं। आवाजों के माध्यम से संपूर्ण दुनिया के रंग, संपूर्ण दुनिया के स्वाद, संपूर्ण दुनिया के भाव को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए आवाज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है।
1: फिर आगे चलते हैं और साहित्य के क्षेत्र में जो आपने इतना कार्य किया है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं।
0: जी, मैंने एमए अंग्रेजी में किया, अंग्रेजी साहित्य में किया, और हिंदी साहित्य को समझने के लिए मैंने पंडित परीक्षा पास की, जिसे इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन मान सकते हैं। तो हिंदी साहित्य बहुत पढ़ा मैंने, मराठी साहित्य भी पढ़ा, और सिंधी मेरी मातृभाषा है, वो साहित्य भी पढ़ा, अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ा। तो साहित्य पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, चाहे वो कविता हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो। और धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे लगा कि हमने भी लिखना चाहिए, पढ़ा तो बहुत साहित्य। तो पहले मैंने लिखना प्रारंभ किया, गजल से प्रारंभ किया, और आज तक गजल ये मेरी मुख्य विधा रही है। 500 से अधिक गजलें मैंने सिंधी और हिंदी में आज तक लिखी हैं और प्रकाशित हैं। कम से कम 8 गजल संग्रह मेरे आ चुके हैं, 2 हिंदी में हैं, अधूरा आसमान छोटे भाई राजेश आसुदानी रकीब के साथ, और एक अभी अभी आया है धुंधला धुंधला। इसके अलावा 6 गजल संग्रह मेरे सिंधी में भी आ चुके हैं। इसके अलावा 2 कविताओं के संग्रह अंग्रेजी में भी आ चुके हैं। तो कविता या गजल ये मेरी विशेष विधा रही है। इसके अलावा नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज और समालोचना यानी क्रिटिसिज्म में भी मैंने काम किया है। तो साहित्य जब मैंने लिखने लगा

0: तो मुझे लगा कि ये एक अपने आप में बहुत ही आनंद की प्रक्रिया है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं, कुछ क्रिएट कर पाते हैं।
1: हाँ
0: और बाकायदा फिर मैंने गजल के रूल्स होते हैं, बहर वजन होती है, मीटर होता है, वो सारी टेक्निकल बातें भी मैंने अपने उस्तादों से वो सीखी। और वो सिलसिला गुजरे 28-30 साल से निरंतर चलता आ रहा है। ऐसा नहीं होता कभी कि मैं लिखना छोड़ दूं, चाहे मैं महीने में 2-4 गजलें लिखूं, लेकिन ये जो प्रक्रिया है लिखने की, सृजन की प्रक्रिया, वो
1: हाँ
0: हमारे अवचेतन पर 24/7 चलती रहती है।
1: क्या बात है डॉक्टर आसुदानी सर, आज हम बहुत फास्ट लाइफ जी रहे हैं,
0: जी
1: तो लिखने के लिए कुछ ठहराव आवश्यक होता है, वो आप कैसे लाते हैं?
0: बिल्कुल, क्योंकि लेखक क्या करता है, लेखक दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको ऑब्जर्व करता है, उसका निरीक्षण करता है, उसे ग्रहण करता है, उस पर मंथन करता है, चिंतन करता है, और इंसान के हृदय में जो अवचेतन और चेतन स्तरों पर हमारी बातें होती रहती हैं, बहुत सारे
1: हाँ
0: हम विचार, किसी को भी पूछे तो संपूर्ण दिवस कोई ना कोई विचार हमारे जहन में है, हमारे
1: हाँ
0: मस्तिष्क में है।
1: हाँ
0: इन विचारों को विश्लेषण करके शब्दों में अभिव्यक्त करता है, और इस तरीके से अभिव्यक्त करता है कि सुनने वाले को आनंद आ जाए। इसलिए ठहराव बहुत जरूरी है। मैं तो
1: हाँ
0: ये कहूंगा कि न केवल साहित्यकार के लिए, जीवन में आज जिस तरीके का हम जीवन जी रहे हैं, हमें रुकना चाहिए। लोग बोलते हैं गति बढ़ाओ, मैं तो आह्वान करूंगा जीवन की गति को कम करो, धीरे धीरे काम करो, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे चलो, आप देखेंगे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक क्रांति आ जाएगी।
1: वाह, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे हैं, आपने अनुवाद भी बहुत सारे किए हैं, तो आपके इस काम के बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
0: 2023 में हथ पकड़ जा थामना हाथ, इस मेरे सिंधी गजल संग्रह पर मुझे केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और भारत में 24 भाषाओं में प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं पहला दृष्टिहीन लेखक हूं जिसे किसी भी भाषा में, 24 भाषा में मिला करके साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो मुझे लगता है कि ये पूर्ण संपूर्ण दृष्टिहीन समाज के लिए गौरव की बात है।
1: निश्चित ही।
0: और ये जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनमें जो साहित्य लिखा जा रहा है वो किसी भी दृष्टि से, जो यूरोपियन भाषाएं हैं या जिन्हें सो कॉल्ड वर्ल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं, उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है। तो हमें जरूरत है कि अपनी भाषा में लिखा जाने वाले साहित्य को अंग्रेजी में अनुवाद करें ताकि विश्व पटल पर वो पहुंच सके। तो अब तक मैं 18 किताबों का सिंधी से अंग्रेजी में अनुवाद कर चुका हूं।
1: क्या बात है, आपने जो कविताएं रची है उनकी कुछ पंक्तियां हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे।
0: जी बिल्कुल, मैं गजल का शायर हूं, तो एक गजल के 2-3 बंद आपको बता रहा हूं कि दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते समझ लेना, हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते समझ लेना, किवाड़ों की कोई अपनी ही मजबूरी रही होगी, दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी।
1: क्या बात है, बहुत खूब आसुदारी सर, समाज सेवा में भी आप बहुत अग्रसर हैं, तो ये भी हम जानना चाहते
0: जी, क्योंकि एक दृष्टिहीन की जो सफलता की यात्रा होती है उसमें बहुत सारे पड़ाव होते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं। तो मैंने विचार किया कि हमें तो सभी के सहयोग से, परिवार के सहयोग से, माता पिता के सहयोग से, मेरी पत्नी आरती है, बच्चे आस्था विनय, इन सब के सहयोग से और समाज के लोगों के सहयोग से आज एक मुकाम पर हम लोग पहुंच गए। तो बाकी जो हमारे दृष्टिहीन भाई बहन हैं उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो इस दृष्टि से मैं द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द ब्लाइंड, इस ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, गत 30 साल से उसका अध्यक्ष हूँ। और इसमें अलग अलग गतिविधियां हम लोग करते हैं, आई डोनेशन का काम करते हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए हम तैयार करवाते हैं, हम डेयर नाम की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू हम करवाते ये काम करवाते हैं, अवेयरनेस का काम करते हैं, ताकि और दृष्टिहीन समाज को उनके अधिकार मिल सके, उन्हें दया नहीं उन्हें अवसर मिलना चाहिए। इस भूमिका के साथ मैं समाज प्रबोधन का काम करता रहता हूं।
1: वाह, ये तो बहुत पुण्य का काम आप कर रहे हैं। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप भारत के पहले दृष्टिहीन मनोवैज्ञानिक है, ये आपने कैसे अचीव?
0: मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया और मैंने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से एमएससी इन अप्लाइड साइकोलॉजी की एग्जाम दी, और उसके बाद और मेरी रुचि बढ़ गई और मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी सबमिट किया नागपुर यूनिवर्सिटी में, और वो अवार्ड हो गया। और मैंने कॉलेज में, मुझे कुछ बच्चों का काउंसलिंग करने की सुविधा मिल गई, अवसर मिल गया। तो मुझे लगा कि

0: काउंसलिंग ये सिर्फ एक इमेच्योर काम नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो मैंने बाकायदा एज अ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट अपना काम चालू किया है। तो मुझे लगता है कि आज जिस एकाकी समाज में रहे, जहां लोनलीनेस बढ़ गया है, जहां लोगों के आपस में दूरियां बढ़ गई हैं, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया है, तो वहां साइकोलॉजी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिज हो, चाहे करियर हो। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में एज अ काउंसलर मैं काम कर रहा हूं।
1: वाह। और आसुदानी सर, बातों बातों में आपने हमें बताया कि आप बचपन से ही आकाशवाणी से जुड़े हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आप सुनते हैं।
0: जी जी।
1: और आकाशवाणी ने क्या परिवर्तन लाया फिर आपके जीवन में, ये जानना चाहेंगे आप।
0: आज जो है, जहां कहीं भी हूं मैं और जो भी मेरा ज्ञान है आज, उसमें आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। एक सामान्य व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा मेरे जीवन में आकाशवाणी ने रोल प्ले किया है। आप देखिए कि मुझे दिखाई नहीं देता था, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता था, मैं बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ सकता था, लेकिन ज्ञान जानने की जिज्ञासा मेरे अंदर थी। तो एक सोर्स क्या था, आकाशवाणी के अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनना। जब मैं 5वीं कक्षा में था, तब से लेकर के मैं ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी और अंग्रेजी न्यूज और मराठी न्यूज, प्रादेशिक न्यूज, आज भी आकाशवाणी पुणे से जो न्यूज आते हैं सुबह 7:10 पर आज भी आते हैं, गुजरे 30 साल से लगातार मैं सुनता आ रहा हूं। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज लगातार सुनता आ रहा हूं, आज भी मैंने सुबह को ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज सुने हैं। तो इतना लगातार अगर आप न्यूज सुन रहे हैं तो आपका जीके एकदम अप टू डेट रहता है। और मुझे लगता है कि मैंने कभी जीके की पढ़ाई नहीं की, मैंने न्यूज़पेपर में इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आकाशवाणी को निरंतर सुनता रहा। तो आज मेरा जो भी ज्ञान है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी से आया। और संगीत में मुझे रुचि थी, सुनने में बड़ी रुचि थी। विविध भारती को हम जिस तरीके से सुनते आ रहे थे, आपकी फरमाइश, मनचाहे गीत, हवा महल अगर आपकी बात करें, तो छाया गीत के तो हम दीवाने हुआ करते थे बिल्कुल। संगीत सरिता वो भी सुना करते थे आप। ये सारे कार्यक्रम आज तक भी सुनते हैं, आज भी हम हर प्रकार का पिटारा, शाम 4 से 5 आता है, वो भी हम सुनते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि हम हर प्रकार के कार्यक्रम सुनते हैं। अगर आपको याद हो, वो 80 का दशक, 90 का दशक, आकाशवाणी नागपुर की अगर मैं बात करूं, तो वहां हर सप्ताह मराठी नाटक आता था संडे को रात को 9:30 बजे, रेगुलरली सुनते थे। हिंदी नाटक भी आता था, मैं दिन भूल गया हूं, वो भी सुनता था। और महीने में एक बार अखिल भारतीय नाटक आता था आकाशवाणी के सभी केंद्रों से, वो भी सुनता था। और एक अखिल भारतीय संगीत महोत्सव होता था, वो सारी चीजें भी सुनते थे। हमने बहुत कुछ सुना, इतना ही नहीं, युवाणी, युवाणी में 2-3 बार मैंने अपने, मेरे भाषण भी रिकॉर्ड हुए, परिचर्चा पे भी मैंने हिस्सा लिया। तो इन सारे कार्यक्रमों के साथ मैं जुड़ा रहा और मन से जुड़ा रहा, बिल्कुल आज तक जुड़ा रहा हूं। जब भी मुझे समय मिलता है, मेरे पास, मैं टीवी नहीं देखता, मैं टू बी वेरी फ्रेंक, मैं टेलीविजन बहुत कम देखता हूं, ना के बराबर, लेकिन आकाशवाणी के साथ मेरा रिश्ता आज तक जारी है। आज भी एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं आकाशवाणी या रेडियो मैं ऑन ना करूं और ना सुनूं।
1: और जाते जाते डॉक्टर विनोद आसुदानी, आप हमें और हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक, हमें जो है ना जीवन में ठहराव लाना चाहिए। सारी चीजें देखने की नहीं है, सुनने की है। सुनने के माध्यम से न केवल आपका बौद्धिक विकास होता है, बल्कि आपका भावनात्मक विकास भी होता है। और रेडियो सुनने से आपकी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि आप सुनकर चीजों को विचार कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। मैं तो सभी बच्चों से, सभी विद्यार्थियों से आह्वान करूंगा कि आप सुनकर के पढ़ाई करें। बहुत सारी चीजें रेडियो सुने और भी ऑडियो सुने, सुनकर के जब आप कोई चीज करते हैं ना, तो आपका बौद्धिक और कल्पना का विकास बहुत अधिक होता है। एक ये बात, और दूसरी, जीवन में साहित्य के साथ जुड़े रहे। साहित्य आपकी संवेदनाओं का विस्तार करता है, साहित्य आपको जीने का दृष्टिकोण देता है, और साहित्य आपको लोगों के साथ जोड़ता है, लोगों की दर्द, लोगों की पीड़ा समझने के लिए आपको सक्षम बनाता है। इसलिए कहता हूं कि साहित्य, आप जहां पर भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, उसमें से आपको अधिक, यानी बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की प्रेरणा देता है। इसलिए आप साहित्य से जुड़े रहें, आकाशवाणी से जुड़े रहें, तो आपका जीवन बदलता चला जाएगा, उसमें आनंद भी आएगा और ठहराव भी आएगा।
1: जी जरूर। डॉक्टर विनोद आसुदानी, आज आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल इस उपलक्ष्य में आपने आपके जीवन का सफर कैसे रहा है आज तक का, और आपके साहित्य का सफर कैसे रहा है, ये सब बातें हमारे साथ शेयर की। हम आज आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं

मेरी तरफ से मैं वहीदा रहमान बोल रही हूँ, सबको बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे ये खुशी हो रही है कि मुझे विविध भारती के ज़रिए एक और मौका मिला है कि मैं आपका दिल बहला सकूं। और कई बार मैं फ्रंट पे जा चुकी हूं सुनील दत्त साहब के साथ दिल बहलाने के लिए, कुछ शोज़ करने के लिए, हमने कई गाने गाए, डांस वगैरह किया था। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बरसों के बाद फिर से मुझे मौका मिला है कि मैं आपका दिल बहला सकूं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं और हर सारे मुल्क वालों के पास अल्फाज नहीं होंगे कि हम आप सबका कैसे शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ये आपकी वजह से हमारा मुल्क हिफाजत से रहता है। आप लोग हमारी हिफाजत करते हैं ताकि हम चैन से सो सकें। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करूंगी कि आप खुश रहें और अच्छी तरह से रहें और हिफाजत से रहें। चलिए इसी मौके पे मैं अपनी एक फिल्म का गाना सुनाना चाहती हूँ। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

0: विविध भारती सेवेवरून प्रसारित होणारा हा कार्यक्रम गेल्या अनेक वर्षापासून लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहे. या कार्यक्रमाविषयी आम्ही विविध भारती सेवेचे निवृत्त उद्घोषक कमल शर्मा यांच्याशी संवाद साधला. कमलजी नमस्कार. विविध भारती पर काफी समय से फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होते रहे हैं और आप काफी समय से इन कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं. आपसे हम इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे.
1: पहले तो आप सबको नमस्कार, आकाशवाणी मुंबई के परिवार को नमस्कार और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार. जैसे कि आप जानते हैं, वैसे तो जो जयमाला कार्यक्रम है वो विविध भारती पर सन 1957 में शुरू हुआ था
0: जी.
1: और पहला प्रोग्राम जो था फौजी भाइयों के लिए, उस समय फौजी भाई कहा जाता था, आजकल फौजी साथी कहते हैं. तो पहला कार्यक्रम जो था अभिनेत्री नरगिस जी ने प्रस्तुत किया था. 2007 में हम अपनी गोल्डन जुबली मना रहे थे, स्वर्ण जयंती, क्योंकि आकाशवाणी की स्थापना को विविध भारती की स्थापना को 50 बरस हो गए थे पूरे. तो उस समय हम लोग जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान थे, हम लोगों को उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ. हम राजस्थान गए थे और जैसलमेर में ये उनसे बहुत ही शानदार मुलाकात रही. उनके जीवन को हमने समीप से देखा, किन कठिन परिस्थितियों में वो देश की सेवा करते हैं. तो ये एक बहुत ही रोमांचित कर देने वाला, बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाला अवसर था. और तब ये हमें महसूस हुआ कि आज अगर हम देश में सुरक्षित हैं तो अपने जवानों की बदौलत, उनकी कर्मठता, उनका समर्पण, उनकी बहादुरी, हर जो विशेषण है उनके लिए छोटा है. और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे जयमाला कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि ये तो उनकी खदमत करने का मौका मिला ही और मेरे दूसरे साथियों को भी मिला, लेकिन जो जिस विशेष कार्यक्रम की मैं बात कर रहा हूँ वो था फोन इन प्रोग्राम हेलो कारगिल. जब कारगिल का युद्ध हुआ तो 3 से 4 महीने के लिए हमने एक विशेष कार्यक्रम जो था अपने फौजी जवानों की हौसला अफजाई के लिए विविध भारती से रोजाना प्रस्तुत किया. उसमें मेरे सहयोगी थे रमेश गोखले जी और हमारी एक और सेवानिवृत्त उद्घोषिका रेणु बंसल जी, तीनों मिलकर के हम ये कार्यक्रम करते थे. और पूरे देश को हमने अपने फौजी जवानों के साथ जैसे खड़ा कर दिया था. और उसमें सेना के जितने भी बड़े बड़े अफसर थे वो तो संदेश देते थे, इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज थे वो फौजी जवानों के जो परिवार के लोग वो उनको संदेश देते थे. और मुझे याद है कि एक बार जयपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल से फौजी जवानों ने फोन किया, किसी का हाथ कटा था, किसी को पेट में गोलियां लगी थी, लेकिन साहब उनका जज्बा इतना ऊंचा था. और जैसे ही मेरे से बात खत्म हुई और मैंने कहा कि अब आप क्या करेंगे, बोले सर आपसे बात हो गई, इतनी तसल्ली हुई, अब हम फिर जाएंगे लड़ने के लिए, आपसे बात करके हमें ये हौसला मिला. तो मुझे लगा कि

आप एयर कंडीशन रूम में बैठ करके देशभक्ति की बातें करें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली हीरो हमारे ये हैं जो हमारे लिए देश पर कुर्बान हो जाते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं और डटे रहते हैं। उसके बाद जब वॉर खत्म हो गया तो चूंकि कार्यक्रम बहुत ही पॉपुलर हो गया था तो फिर उसकी जगह हमने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसको रविवार को मैं प्रस्तुत करता था, उसका नाम था जयमाला संदेश। उसमें फौजी जवानों के जो परिवार के लोग थे उनकी चिट्ठियां हम पढ़ा करते थे और साहब बहुत ही भावुक कर देने वाली वो चिट्ठियां होती थी। उसमें बच्चे लिख रहे हैं पिता के नाम, पत्नी लिख रही है, बहन है, माँ की चिट्ठी है बेटे के नाम। तो आप सोचिए कि क्या कैफियत होती होगी जब हम उस प्रोग्राम को लाइव प्रेजेंट करते होंगे। वो प्रोग्राम इतना ज्यादा हमको

0: भजन करते होंगे, वो प्रोग्राम इतना ज्यादा हमको इमोशनल कर देता था, मैं बता नहीं सकता आपको।
1: कमल जी, हमारे श्रोता ये भी अवश्य जानना चाहेंगे कि फौजी भाइयों की प्रतिक्रिया क्या रही।
0: अरे साहब, जिसको कहते ना गोदी में उठा लिया फौजी जवान जो आए, और वो इतने ज्यादा चार्ज हो गए, उनको लगा कि विविध भारती जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है उनके जीवन में। और आप सोचिए कि 2007 की बात है, उस समय भी चूंकि हमारे फौजी साथी जो है उन उस समय भी कम्युनिकेट करने के लिए उनके उसका एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे फोन उनके पास ना, पता नहीं उस समय उसकी क्या सुविधा थी, लेकिन मुझे को मालूम है कि स्थितियां बड़ी ही कठिन थी जीवन की, जहां वो हर थोड़ी दूर पर एक टपरी सी बनी हुई थी टीम की, जिसमें उनको 8 घंटे ड्यूटी करनी होती थी, बॉर्डर पे वो ऐसी गुमटियां सी बनी हुई थी तो उस पर। और इसके अलावा जो है वहां उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जब गर्मी के दिनों में रेत इतनी तप जाती है कि हम पापड़ उसमें रेत में रख के भून लेते हैं, तो इससे आपको जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं उनके बारे में पता चल जाता है। तो ये तो रेगिस्तानी इलाकों की बात है, ऐसे ही जहाँ जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, माइनस पे टेम्परेचर पहुंच जाता है, वहां पर भी जवानों का ऐसे ही बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन अब तो खैर स्थितियां बहुत पहले से बहुत बेहतर हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सब स्थितियां कितनी भी सुविधाजनक हो जाएं, असल चीज है उन हालात में देश के लिए खड़े रहना, देश की जनता के लिए खड़े रहना, ये सबसे बड़ी बात है। और यहीं पर आकर के आकाशवाणी की, विविध भारती की जो सबसे बड़ी भूमिका है, जो किसी चैनल में कभी नहीं रही, कि हम अपने फौजी जवानों के साथ हमेशा खड़े रहे, पूरे देश की जनता को जोड़ दिया रेडियो ने फौजी जवानों के साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो कितना बड़ा सरोकार है आकाशवाणी का अपने फौजी साथियों के लिए।
1: कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकूणच एकूण समाजाचं प्रतिबिंब आकाशवाणीच्या ध्वनी लहरीतून अभिव्यक्त होत असतं। आकाशवाणी मनोरंजन करते, तशी ती ज्ञान माहिती देते आणि मार्गदर्शन करते प्रत्येकासाठी, तसंच प्रत्येक विशिष्ट समूहासाठी ती वेळ काढते, सतत संवाद करत राहते

0: डॉक्टर।
1: आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारती नागपूरवरून एकाच वेळी प्रसारित करीत आहोत लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर। श्रोते हो नमस्कार, HCG कॅन्सर हॉस्पिटल नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपलं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। आज या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपण बातचीत करणार आहोत स्तनांचा कर्करोग म्हणजेच ब्रेस्ट कॅन्सर याविषयी, आणि आपल्यासोबत आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर अजय मेहता। आपले प्रश्न आपल्या शंका आपण डॉक्टर अजय मेहता यांना विचारू शकता आणि आमच्या या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता। त्यासाठी आमचे फोन नंबर्स आहेत 6940067256010 आणि 2529266। आपण जर नागपूरच्या बाहेरून कॉल करणार असाल किंवा मोबाईलवरनं कॉल करणार असाल तर या फोन नंबर्सच्या आधी 0712-0712 हा STD कोड नक्की डायल करा। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं HCG कैंसर हॉस्पिटल नागपुर प्रस्तुत हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। आज इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में हम बातचीत करने जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन के कर्क रोग के बारे में। हमारे साथ है तज्ञ डॉक्टर अजय मेहता। आप अपने सवाल अपनी शंकाएं डॉक्टर अजय मेहता से पूछ सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में सहभाग ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए, फोन नंबर्स हैं 6940067256010 और 2529266। आप अपने मोबाइल से कॉल करना चाहते हैं या नागपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो इन फोन नंबर से पहले 0712 जरूर डायल कीजिए। डॉक्टर अजय मेहता नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, जून का महीना शुरू है और जून महीना ये जो होता है ये कैंसर सर्वाइवर डे इसमें आता है, जो फर्स्ट संडे पहला रविवार होता है। कैंसर सर्वाइवर मतलब जिन्होंने कैंसर पे मात कर ली है, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक दिन हम मनाते हैं। तो क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही बहुत डर पैदा हो जाता है और उसमें से अगर आप योद्धा बनकर उसको हराकर आगे आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप पिछले कई सालों से
2: 40 सालों से
1: जी, तो आपके निगाह में जो कैंसर सर्वाइवर है उसमें क्या खास बात होती है कि क्या चीजें हैं जो कैंसर पर मात करने में हमें हेल्पफुल होती है? हाँ। इसके बारे में बात करना चाहते हैं लेकिन पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते
3: मैम, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको भी और डॉक्टर साहब को भी।
2: गुड मॉर्निंग
3: सर, मेरा एक सवाल था। मेरा जो मतलब ये जो ब्रेस्ट कैंसर का आज का जो ये है अपना टॉपिक है उस पर मेरा सर ऐसा है, लेफ्ट साइड में जो ब्रेस्ट है ना वो मतलब हल्का सा बड़ा लग रहा है। अच्छा। और जब कुछ मतलब इनर वेयर जब हम पहनते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो बड़ा टाइप का दिखाई देता है। तो अभी तक तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया नहीं है, तो करना चाहिए क्या सर?
2: हाँ डेफिनेटली, देखो ब्रेस्ट का साइज बड़ा छोटा रहना ये नॉर्मल है, पर उसमें अगर कुछ गठान है या कोई दूसरी चीजें है या निप्पल रिट्रैक्टेड है या कहीं ऐसा लग रहा है आपको हाथ में, तो आप डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए। और आपकी एज क्या है? उम्र
1: फोन कट चुका है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
1: उम्र का जब हम बात करते हैं तो क्या उम्र हो सकती है कि कैंसर के लिए हमें सजग रहना चाहिए?
2: हाँ नहीं, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया में अगर हमने देखा है तो कम एज में हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर, 25 से 50 साल तक की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर होने की शक्यता है। ये एक डिफरेंट है, इफ यू सी डेवलप्ड कंट्री वेस्टर्न वर्ल्ड में ये ब्रेस्ट कैंसर लेट एजेस में पाया जाता है, 60 अच्छा। के आसपास के ऊपर।
1: अच्छा।
2: और इंडिया में ये कम एज में पाया जाता है, पर ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन कैंसर वुमेन में है। अगर हम देखेंगे तो आज ऑलमोस्ट 28-30% ऑफ कैंसर्स वुमेन में अगर होंगे तो वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन इन वुमेन।
1: अच्छा। हम बात कर रहे थे कि क्या ऐसी चीजें हैं कि कैंसर पे मात करने में हमें सहायक हो सकती है।
2: सबसे इम्पोर्टेंट है कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना
1: जी,
2: ये सबसे इम्पोर्टेंट है कैंसर के ऊपर मात करने के लिए। जैसे मैंने बताया डेवलप्ड कंट्री में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कैंसर्स जो

0: स्तन के कैंसर है स्टेज वन में रहते हैं या स्टेज जीरो।
1: अच्छा।
0: स्टेज जीरो का मतलब है कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है और वो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है और मैमोग्राफी, जिसका मतलब है ब्रेस्ट कैंसर के जांच के लिए एक वो टेस्ट होती है, उससे वो कैंसर डिटेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं स्टेज जीरो। अगर स्टेज जीरो में हम कैंसर डिटेक्ट करते हैं तो उसका क्योर ऑलमोस्ट 100% है। आज भी 2026 में भी इंडिया में ऑलमोस्ट 60-70% कैंसर हम स्टेज थ्री और स्टेज फोर में देखते हैं।
1: अच्छा।
0: ये एक डिफरेंस है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में। तो मेरा तो लोगों को कहना यही है कि अर्ली डिटेक्शन अगर आप करेंगे तो कैंसर पे मात करना बहुत आसान हो जाता है।
1: जी बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कर्क रोग जिसके बारे में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं, तो ये कई तरह के लोगों में सवाल होते हैं, कई तरह की शंकाएं आशंकाएं होती है, कुछ सही होती है कुछ गलत होती है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से हम इन आशंकाओं से दूर रहे, किस तरह की कॉमन मिथ्स आपके पास आती है?
0: हाँ, सबसे पहले तो ये एक आती है कि जब गठान लगती है और हम कहते हैं कि हमें डायग्नोसिस करने के लिए इसके FNAC या नीडल बायोप्सी करनी पड़ेगी
1: जी।
0: तो वो बोलते हैं कि भाई हम ये इसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम ये करेंगे तो इससे छेड़ेंगे तो ये कैंसर बहुत जल्दी फैलेगा। पर ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक कैंसर का निदान नहीं होता हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो गठान ऑलमोस्ट 70% जो गठाने ब्रेस्ट में पाई जाती है वो कैंसर की नहीं होती।
1: अच्छा।
0: ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये जो कॉमन मिथ है कि हम अगर उसकी बायोप्सी करेंगे या उसको छेड़ेंगे तो कैंसर फैलेगा, ऐसा नहीं है। कैंसर वैसा भी फैलता है। कैंसर एक कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो छेड़ने से फैलेगी। प्रॉब्लम क्या होता है, हम जब डायग्नोस कर लेते हैं तो पेशेंट डर के मारे फिर जल्दी आता नहीं।
1: अच्छा।
0: तो उसको लगता है कि हमारे वो बायोप्सी के वजह से वो कैंसर बढ़ गया, पर वो वैसा तो वैसा भी कैंसर फैलने वाला है।
1: जी जी जी।
0: कैंसर एक रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स है, अनियंत्रित मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, और जिस पे कंट्रोल नहीं रहता तो वो उसका ट्यूमर हो जाता है।
1: जी।
0: जैसे एक कैंसर की पेशी 24 घंटे में 10 लाख हो सकती है, 15 लाख हो सकती है, 20 लाख हो सकती है, तो वैसे भी वो कैंसर बढ़ने वाला है। हम डायग्नोस करके जब तक हम देखते नहीं कि ये कैंसर है उसको ट्रीट कैसे करेंगे?
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है।
1: बिल्कुल। एक श्रोता फोन पे है। हेलो
2: डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि ट्यूमर और सिस्ट में क्या फर्क होता है, और सिस्ट ट्यूमर में यानी कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्या, और अगर मेल लोगों के ब्रेस्ट में सिस्ट है तो वो क्या ट्रांसफर यानी उसका भी ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्शन हो सकता है क्या, फॉर दैट मैटर एनी सिस्ट इन द बॉडी?
0: ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये भी एक बहुत डर रहता है लोगों में कि सिस्ट क्या चीज है। अभी जैसे ब्रेस्ट में हम देखेंगे तो सिस्ट बहुत कॉमन है, वो फीमेल्स और मेल्स में भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, जिससे बॉडी के अंदर सिस्ट बनती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, जब तक ये मेंसेस चालू रहते तो ये होते रहेंगे। तो ये सिस्ट कैंसर में नहीं है।
1: अच्छा।
0: और ये सिस्ट कैंसर में परिवर्तन नहीं होता, कभी कभी सिस्ट 25-25 साल तक रह सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो उसको जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपने बोला मेल्स में, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की शक्यता है।
1: अच्छा।
0: वो 1% है।
1: हाँ।
0: एज कंपेयर टू फीमेल्स, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होने की शक्यता बहुत ज्यादा है, मेल ब्रेस्ट में भी कैंसर होता है जो 1% होता है। पर जैसा मैंने बताया वो अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाएगा कि ये सिस्ट है या सॉलिड ट्यूमर है।
1: जी। एक और फोन लेते हैं। हेलो।
3: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग।
3: मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ, लश्करी बाग नागपुर से। तो सर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि जिन लेडीज को सर ये ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो सर क्या उनको मतलब इन फ्यूचर मतलब कि अपनी मदरहुड लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मतलब कंसीव करने में जैसे या लैक्टेशन में?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसमें सब डिपेंड करता है कौन से स्टेज में हमने कैंसर को डिटेक्ट किया है। फर्स्ट स्टेज में किया है, सेकंड स्टेज में किया है, थर्ड में किया है, तो उस पर पता चलता है कि आगे ट्रीटमेंट क्या देंगे। और जैसा यूजुअली हम क्या करते हैं कि पहले 2 साल तक हम प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि बहुत बार ये कैंसर ER रिसेप्टर

0: मतलब ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स से प्रभावित होते हैं, और प्रेगनेंसी में ये हार्मोन्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो इससे कैंसर का भी बढ़ना बढ़ सकता है।
1: जी
0: इसीलिए हम वो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कहते हैं। जैसा वो सेम थिंग लैक्टेशन, अगर इमीडिएटली डिलीवरी के बाद डिटेक्ट होता है तो हमको कीमोथेरेपी देना पड़ेगा, कुछ दवाइयाँ देना पड़ेगा, तो वो दवाइयाँ ब्रेस्ट में से जा सकती है और बच्चे को भी हार्म करेगी, तो लैक्टेशन भी हम बोलते हैं कि अवॉइड करिए।
1: जी
0: तो मेरा ख्याल है आपका
1: जी
0: क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया हूँ।
1: बिल्कुल। हम बात कर रहे थे कि हर कोई सिस्ट या हर गठान जो होती है वो कैंसर नहीं
0: नहीं
1: होती है, तो
0: होती।
1: किस तरह की गांठें होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये कैंसर की हो सकती है और उन्हें ज़्यादा ध्यान तवज्जो देना ज़रूरी होता है?
0: हम सबसे पहले तो हम एडवाइस करते हैं कि हर स्त्री आफ्टर द एज ऑफ 25 सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहिए।
1: जी
0: जब वो नहाती है तो यूजुअली 5वें 6वें दिन 8वें दिन पीरियड्स के बाद, जब ब्रेस्ट टेंडर नहीं रहती है, नाजुक नहीं रहती है, तब वो नहाते टाइम अपने ब्रेस्ट की एग्जामिन करना चाहिए।
1: जी
0: और हाथ को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट ही अपने ब्रेस्ट के अपने गठान को पहचान सकेगा।
1: जी
0: अगर हाथ को कुछ गठान लगती है या उसके ब्रेस्ट के ऊपर का चमड़ा अगर टफ हो गया, निपल अंदर रिट्रैक्ट हो रही है, या निपल में से कुछ द्रव निकलता है, ब्लड निकलता है, या स्किन टाइट हो गया है ब्रेस्ट के ऊपर का, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। फिर डॉक्टर कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया मैमोग्राफी करेगा,
1: जी
0: अल्ट्रासाउंड करेंगे या और बाकी के टेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर वो गठान पॉजिटिव है या नहीं वो प्रूफ करने के लिए कुछ टेस्ट रहती है, जैसा FNAC
1: जी
0: या कोर बायोप्सी करते हैं। तो ये इस तरह से हमको पता चल जाएगा कि ये जो गठान है ये कैंसर की है।
1: जी एक और श्रोता है फोन पे। हेलो
0: हाँ
2: हेलो मैडम, मैं श्रीकांत नाथ नौरा कोटे से बात कर रहा हूँ। मैडम
1: बोलिए।
2: आदमी का वेट बोला बढ़ गया, बोला बढ़ जाता बोला, तो उसके हिसाब से वो सन में बढ़ जाते, तो कोई आगे में कोई प्रॉब्लम है क्या मैडम?
1: वेट बढ़ने से कोई प्रॉब्लम है क्या?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन। अपने श्रोतागण बहुत ही अच्छे
1: जी
0: क्वेश्चन
1: जागरूक है।
0: पूछ रहे हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि ओवर ओबेसिटी यानी मोटापा एक बहुत बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर हैविंग ब्रेस्ट कैंसर।
1: अच्छा।
0: मोटापा बहुत, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल मोटापा, यानी मेनोपॉज के बाद वेट गेन जो होता है, उस वक्त ब्रेस्ट कैंसर भी होने के चांसेस बहुत है, बिकॉज ईस्ट्रोजन्स ER पॉजिटिविटी के कैंसर्स जो रहते हैं
1: जी
0: उनका प्रभाव, उनके वजह से ब्रेस्ट कैंसर में होने की रिस्क बढ़ जाती है।
1: जी
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छा क्वेश्चन है।
1: बिल्कुल। डॉक्टर मेहता, आपने कहा कि आप पिछले 40 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैंसर के पेशेंट्स देख रहे हैं, तो इन 40 सालों में क्या फर्क आपको नजर आता है कि पेशेंट पहले किस तरह आपके पास आते थे या कौन सी उम्र में पहले आते थे, अब उम्र में क्या फर्क है, नंबर ऑफ पेशेंट्स में क्या फर्क है?
0: मुझे तो ये बताते हुए बहुत दुख होता है कि 1990 में ब्रेस्ट कैंसर की केसेस रहती थी 30,000
1: अच्छा
0: नई केसेस पर ईयर। आज आज 2023 के जो फिगर्स है
1: जी
0: उसमें है 2.5 लाख। तो इसका
1: अच्छा
0: मतलब 500
1: बहुत बढ़
0: परसेंट
1: गया है। हाँ
0: ऑलमोस्ट 500% इंक्रीज इन द
1: कैंसर
0: न्यू
1: केसेस।
0: केसेस ऑफ कैंसर,
1: और ये हम सिर्फ
0: ब्रेस्ट कैंसर,
1: ब्रेस्ट
0: ब्रेस्ट
1: कैंसर की
0: कैंसर की
1: बात
0: बात
1: कर रहे
0: कर रहा हूं मैं,
1: हैं,
0: सिर्फ
1: बाकी
0: ब्रेस्ट
1: सारे
0: कैंसर
1: कैंसर की नहीं।
0: नहीं,
1: हाँ
0: सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूं। अब ये हो रहा है कि ऑलमोस्ट 60% मैंने बताया आपको हम Stage 3 और Stage 4 में देखते हैं,
1: जी
0: बट कैंसर अवेयरनेस काफी हो गया है।
1: अच्छा।
0: आज हम कैंसर्स अर्ली स्टेज में भी काफी देख रहे हैं, यानी Stage 1 में भी देख रहे हैं,
1: हाँ
0: ऑलमोस्ट 30-40% केसेस देख रहे हैं जो पहले हम कभी नहीं देखते थे। पहले
1: अच्छा
0: हम देखते थे 80-90% Stage 3 Stage 4 में, वो
1: जी
0: अभी 60% हो गया है।
1: जी जी
0: पर फिर भी हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी
1: जी
0: फॉर अर्ली डिटेक्शन, बिकॉज मैंने बोला बेस्ट क्योर विल बी इफ यू डिटेक्ट कैंसर वेरी अर्ली।
1: जी Stage 0 के बारे में आपने बात की, तो ये Stage 0 क्या हो सकती है, कैसे हमें पता चले, क्या करना चाहिए ताकि हम Stage 0 में ही पकड़
0: करेक्ट। Stage 0 का मतलब यह है कि
1: ले?
0: पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है और पेशेंट अपने रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है। तब हम डॉक्टर जैसे 35-40 के बाद मैमोग्राफी साल में एक बार करते हैं। मैमोग्राफी में अगर हम कैंसर डिटेक्ट करते हैं, छोटा छोटा कैल्सिफिकेशन विच अदरवाइज

0: हाथ को गठान लगती नहीं
1: नहीं
0: है,
1: है। हाँ
0: तो इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज जीरो। इस स्टेज में अगर हम कैंसर देखते हैं तो क्योर रेट ऑलमोस्ट 95-100%
1: जी
0: ये होता है।
1: जी बिल्कुल। हम श्रोताओं को एक बार फिर बता दें, आप सुन रहे हैं HCG कैंसर हॉस्पिटल नागपुर, हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम, और आज हम बातचीत कर रहे हैं स्तनों के कर्क रोग के बारे में, यानी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। हमारे साथ है तज्ञ डॉक्टर अजय मेहता। आप अपने सवाल, अपनी शंकाएं डॉक्टर अजय मेहता से पूछिए। हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, फ़ोन नंबर्स हैं 6940067, 2560101 और 2529266. 0712 ये नागपुर का STD कोड है, अगर आप अपने मोबाइल से कॉल करना चाहते हैं या नागपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो डॉक्टर मेहता, क्योंकि आपने इतनी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी बदल चुका होगा पहले की मुकाबले। अब कई अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स अपने पास है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या बताना चाहेंगे?
0: ये बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या है कि इतने सालों में मैंने जो देखा है, सर्वाइवल हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट।
1: अच्छा,
0: सर्वाइवल बहुत अच्छा इम्प्रूव हो गया है। इसका मतलब क्या है, आज इतने अच्छे ड्रग्स अवेलेबल है, जैसा मैंने बताया, अगर अगर पेशेंट लेट भी आता है, जिसे हम कहते हैं कि काफी बड़ा का ट्यूमर है, Stage 3 का ट्यूमर है, फिर भी इतनी अच्छी दवाइयां आ गई हमारे पास।
1: अच्छा।
0: और इतने अच्छे डायग्नोस्टिक मेथड्स आ गए कि हम पहले कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और ये देके कैंसर का साइज छोटा कर देते हैं, और बाद में उसे हम ऑपरेट करते हैं। आज इतना डेवलपमेंट हो गया है कि हम पूरा स्तन निकालने की जरूरत नहीं है। जो जो डर है लेडीज में कि आज मेरा पूरा स्तन निकालना पड़ेगा, आज हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ उतनी सी गठान निकालेंगे, बगल की कुछ गठाने निकालते हैं, और सर्वाइवल विल बी द सेम। कुछ जैसे मैंने बोला, 20 साल पहले, 25 साल पहले हम पूरा स्तन निकालते थे। इनफैक्ट आज अगर हम ये ब्रेस्ट कंजर्वेशन करेंगे तो सर्वाइवल इज ऑलमोस्ट द सेम और इफ नॉट बेटर, बिकॉज साइकोलॉजिकली भी पेशेंट बहुत स्टेबल रहता है। और रेडिएशन फैसिलिटीज, कीमोथेरेपी, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, साइकोथेरेपी, ये काउंसिलिंग बहुत अच्छा अभी आ गया है, तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आने लग गए हैं।
1: जी बिल्कुल। और एक बार जब कैंसर है ये पता चल जाता है, तो किस तरह से हमें उस की ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, करनी चाहिए? क्योंकि हर कैंसर तो अलग होता होगा,
0: करेक्ट,
1: तो क्या अलग अलग प्रकार है और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है?
0: कमिंग टू ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में जैसे मैंने बताया, सबसे पहले जब हम डायग्नोसिस करते हैं, इवन बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, हम कोर बायोप्सी करते हैं और देखते हैं ER, PR, HER2, KI67, ये ट्यूमर के मार्कर्स हैं।
1: अलग,
0: ये अलग अलग हर पेशेंट में अलग अलग है। अभी ट्रिपल नेगेटिव पेशेंट्स रहते हैं जिनमें हम सभी नेगेटिव रहता है, तो पहले ये एग्रेसिव ट्यूमर्स रहते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसे हम पहले कीमोथेरेपी देते, इम्यूनोथेरेपी देते। अभी नया ट्रीटमेंट है इम्यूनोथेरेपी, इसमें क्योर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कुछ एक कैंसर्स रहते हैं जो HER2 पॉजिटिव रहते हैं, जिसमें ये ट्यूमर ब्रेन में जाने की शक्यता रहती है।
1: अच्छा।
0: तो इन्हें भी, ये पेशेंट्स को हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं और फिर बाद में ऑपरेट करते हैं, बाद में बची हुई कीमोथेरेपी और रेडिएशन देते हैं। तो ये पूरा ट्रीटमेंट जो ये रहता है, आजकल हमें हर पेशेंट को हम ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं।
1: अच्छा।
0: ताकि उसका पूरा प्लानिंग जो होता है वो ट्यूमर बोर्ड में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सब मिलके डिसाइड करते हैं उसका पूरा ट्रीटमेंट। तो होलिस्टिक ट्रीटमेंट, और जिसमें इवन काउंसिलिंग, काउंसिलर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है काउंसिलिंग ऑल्सो।
1: जी जी। एक और श्रोता फोन पे है, हेलो
2: हेलो,
1: हाँ बोलिए।
2: मैडम ये मुझे क्वेश्चन करना था कि मेरी मिसेस जो है ना, उसको 18-19 साल पहले जो है एक गांठ वो डिटेक्ट हुई थी और उसको ऑपरेट करके निकाला था
1: जी।
2: तो अभी क्या फिर से उसकी जांच कराना, तकलीफ कुछ भी नहीं है बट उसकी जांच कराती रहनी चाहिए?
0: जैसा मैंने बताया, 40-45 साल के बाद एक बार साल में मामोग्राफी करना बहुत जरूरी है, और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वैसे भी वो करती होगी। फैमिली में और कुछ हिस्ट्री है क्या, वो भी देखना बहुत जरूरी है, जैसे मदर और किसी को है क्या, आंटी, मदर्स की सिस्टर्स या उनके बच्चों में। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक। तो जेनेटिक फैक्टर में रहता है अभी ब्रेस्ट

0: कैंसर में BRCA 1 BRCA 2 करके
1: जी जी
0: आपने नाम सुना होगा।
1: बिल्कुल.
0: अगर मदर को BRCA 1 पॉजिटिव है, BRCA 2 पॉजिटिव है और उसे को दो डॉटर्स हैं, और एक डॉटर को अगर उसने वो BRCA की जीन ट्रांसफर की, तो वो डॉटर को ब्रेस्ट कैंसर होने की शक्यता 55-85% इन हर लाइफ टाइम।
1: ओह
0: और दूसरी डॉटर जिसे वो ट्रांसफर नहीं की, उसे रिस्क इज ओनली 10%, जस्ट लाइक एनी। सो इम्पोर्टेंट ऑफ BRCA टेस्टिंग भी आजकल हो गया। तो ऑल यंग पेशेंट्स जो रहते हैं, 25 साल 26 साल जिनको होता है, उनमें भी हम ये टेस्टिंग करते हैं, BRCA
1: और
0: टेस्टिंग
1: अगर आपको पता है कि आपके घर में किसी को कैंसर है तो ये टेस्ट
0: करना
1: जरूर
0: बहुत
1: करना.
0: जरूरी है,
1: जी
0: जरूरी
1: बिल्कुल.
0: है यंग
1: एक
0: पेशेंट।
1: और फोन ले लेते हैं. हेलो,
2: हेलो, गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग।
2: मैं रश्मि जीरापुरे बात कर रही हूँ नंदनवन से. सर, मुझे ये पूछना है कि मेरे मम्मी को जैसे 0 डिग्री मतलब कैंसर ये से डिटेक्ट हुआ, अभी मार्कर टेस्ट के लिए उसे भेजा गया है, तो ये 0 डिग्री एग्जैक्टली क्या होता है, उसकी मतलब बाकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है?
0: वही मैंने पहले बताया था कि मैमोग्राफी में डिटेक्ट हुआ है, इसका मतलब मैंने बहुत ही
2: हाँ
0: अर्ली स्टेज में,
2: हाँ तो अभी
0: करेक्ट
2: वो मार्कर टेस्ट
0: मार्कर
2: जैसे आप
0: टेस्ट,
2: बोल रहे हैं
0: करेक्ट
2: उसके लिए
0: करेक्ट
2: भेजा गया है, उसके रिपोर्ट आने से अभी.
0: करेक्ट। तो वो रिपोर्ट आने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं, बट यूजुअली अगर बहुत मैमोग्राफी है तो पहले तो सर्जरी करके निकाल देंगे।
2: हाँ, वो भी निकाल लिया है सर.
0: अच्छा, निकाल दिया तो वो फिर अभी वो टेस्ट
2: हाँ
0: के रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड होगा। अगर वो पूरा ब्रेस्ट कंजर्वेशन ही हुआ है तो हो सकता है एक भी अगर गठान नहीं है, तो अभी काफी साइंस डेवलप हो गया है जिसे हम कहते हैं ऑन्को टाइप DX टेस्टिंग।
1: अच्छा.
0: तो जिससे क्या होता है कि कीमोथेरेपी की जरूरत है या नहीं है,
1: हाँ,
0: वो भी डिसीजन हो सकता
1: अच्छा
0: है। अगर
1: अच्छा
0: उसका स्कोर कम है तो आपकी मदर को कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं रहेगी,
1: जी
0: और अगर वो हार्मोन पॉजिटिव है तो सिर्फ हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे।
1: अच्छा.
0: हाँ, और ब्रेस्ट कंजर्वेशन है तो रेडिएशन देना पड़ता है ताकि वो बीमारी नहीं आए। तो आप
1: जी
0: बिल्कुल बेफिक्र रहिए,
1: जी
0: वो रिपोर्ट्स आने दीजिए, उसके बाद ही फिर वो डिसीजन डॉक्टर सही डिसीजन लेंगे।
1: जी बिल्कुल. तो कई नई तकनीकों के बारे में आपने बातें की, और सर्जरी जो करते हैं या शस्त्रक्रिया जो होती है उसमें भी कई नई तकनीक
0: करेक्ट,
1: आ चुकी
0: आ
1: होगी, तो
0: चुके हैं,
1: उसके बारे में भी थोड़ा
0: करेक्ट।
1: सा हम जानना चाहेंगे.
0: हाँ, देखो, सर्जरी ऑल सॉलिड ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेस्ट, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर, सर्जरी इज द मेन स्टे,
1: अच्छा
0: यानी सर्जरी के बगैर कंप्लीट नहीं होती है
1: जी
0: ट्रीटमेंट।
1: जी
0: हो सकता है आप पहले हम कीमोथेरेपी दे के छोटा करें, फिर बाद में भी कीमोथेरेपी दे, रेडिएशन दे, छोटी सर्जरी बड़ी सर्जरी, बट अभी जैसा साइंस डेवलप हो गया है, हमारे यहाँ पे कभी भी फ्रोजन सेक्शंस आ गए।
1: अच्छा.
0: फ्रोजन सेक्शन का मतलब क्या होता है, हम ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट ले जाते हैं, सिर्फ छोटी सी उतनी गठान निकालते हैं और तुरंत पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। 15 मिनट के अंदर हमको वो बताती है पैथोलॉजिस्ट कि आपके सभी मार्जिन्स क्लियर है,
1: अच्छा,
0: यानी कैंसर पूरी तरह से निकल
1: निकल
0: गया
1: चुका
0: है।
1: जी.
0: अगर नहीं निकला तो वो भी बताती है कि ये मार्जिन नजदीक है और निकालिए थोड़ी सी। तो पूरी ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं
1: और
0: है,
1: ये तभी मतलब टेस्ट
0: कभी
1: भी
0: के
1: तभी
0: कभी
1: होता है जब ऑपरेशन
0: ऑपरेशन
1: शुरू है,
0: होता है
1: मतलब बार बार ऑपरेशन करने
0: करने
1: की
0: की
1: भी जरूरत.
0: जरूरत नहीं
1: जी
0: है, उसी
1: जी
0: टाइम पे होता है। 20 मिनट के अंदर, 15-20 मिनट में पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में ही रहता है। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है आज, तो मुझे तो कहना है कि भाई ब्रेस्ट कैंसर से बिल्कुल डरिए मत,
1: जी
0: आज पूरा क्योर हो जाता है। यही है कि जैसा मैंने बताया कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, आपको अर्ली डिटेक्ट करना पड़ेगा
1: जी जी
0: फॉर
1: जी
0: बेटर
1: बिल्कुल
0: रिजल्ट्स।
1: जी बिल्कुल. जब बेटर रिजल्ट्स की बात आती है, अर्ली डिटेक्शन की तो बात है ही है, पर उसी के साथ साथ पेशेंट का जो काउंसलिंग आपने कहा ज़रूरी
0: हाँ,
1: होता है, तो
0: यस,
1: ये किस तरह से किया जाता है और इसकी क्या ज़रूरत है, कितना इम्पोर्टेंट है?
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिजीज में आप देख लीजिए, अगर आप साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, टेंशन में है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा,
1: जी
0: आपका डायबिटीज बढ़ेगा, तो फिर क्यों नहीं कैंसर। तो
1: हाँ
0: कैंसर में भी रिस्पॉन्स रेट है, हमने जो देखा है, इस पर काफी स्टडीज हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ पेशेंट कोऑपरेट्स प्रॉपरली, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो काउंसलिंग पेशेंट का, पेशेंट के रिलेटिव्स का, अब फॉर एग्जांपल अभी ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रही है तो उसके हस्बैंड का, उनके उसकी मदर इन लॉ इन लॉज का, बच्चों का काउंसलिंग, जो डर रहता है कि आज मुझे कैंसर हो गया तो मेरी लड़कियों को कैंसर होने का चांस क्या है। तो काउंसलिंग ये है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट ये करना बहुत जरूरी है। और आज ये

0: साइकोथेरेपी जिसको बोले काउंसिलिंग
1: जी
0: कहते हैं,
1: जी
0: इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और हम ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे हॉस्पिटल में हम करते हैं.
1: जी बिल्कुल, क्योंकि डर
0: डर
1: सब कैंसर का नाम सुनते ही न केवल पेशेंट बट घर में सभी लोग डर जाते हैं,
0: करेक्ट
1: और उसके आसपास जो कई सारी भ्रांतियां भी होती है. तो
0: बराबर.
1: आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को कि ताकि वो इन भ्रांतियों में ना रहे.
0: करेक्ट. सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि डायग्नोसिस के टाइम पे वो बोलते हैं हम बायोप्सी नहीं करेंगे, हम एफएनएसी नहीं करेंगे, या उससे कैंसर छेड़ जाता है तो वो जल्दी फैलता है. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मिथ है कि बायोप्सी से कैंसर बढ़ेगा. ये उसको दूर करना जरूरी है,
1: जी
0: क्योंकि जब तक हम डायग्नोस नहीं करेंगे हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे.
1: जी बिल्कुल. और क्योंकि हम बात कर रहे थे कि अर्ली एज में, छोटे उम्र में भी कैंसर आजकल हम देखते हैं,
0: देखते
1: तो
0: हैं
1: उसका क्या कारण हो सकता है? क्या खाने पीने की हमारी आदतें या लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं,
0: करेक्ट.
1: क्या ये चीजें भी बहुत कंट्रीब्यूट करती है?
0: यस यस यस वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप बताया कि ओबेसिटी है. अभी ब्रेस्ट कैंसर में क्या, अर्ली मेनार्की लेट मेनोपॉज, यानी
1: अच्छा.
0: अगर आपकी महावारी बहुत जल्दी चालू होती है और बहुत लेट खत्म होती है तो बॉडी आपकी उतने देर तक ओवुलेटरी साइकिल्स के लिए एक्सपोज होती है, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं.
1: अच्छा
0: फिर लेट मैरिज,
1: अच्छा
0: लेट लेट फर्स्ट चाइल्ड, 30 ईयर्स के बाद, 32 ईयर्स के बाद अगर फर्स्ट चाइल्ड होता तो आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का शक्यता ऑलमोस्ट 10-12% बढ़ जाएगी.
1: ओ
0: फिर नो ब्रेस्ट फीडिंग और लेस ब्रेस्ट फीडिंग. फिर और एक रीजन है फैमिली, अल्कोहल, टोबैको, ऑल दीज फैक्टर्स, मल्टी फैक्टोरल है ब्रेस्ट कैंसर.
1: जी
0: और जैसा और एक है जीन्स का,
1: हाँ,
0: जैसे मैंने पहले
1: तो
0: एक्सप्लेन
1: जीन्स के
0: किया,
1: लिए तो हम
0: जेनेटिक्स का
1: कुछ कर नहीं सकते.
0: कर नहीं
1: बिल्कुल
0: पाते, बट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर सकते
1: जी बिल्कुल.
0: हैं.
1: एक फोन पहले ले लेते हैं.
0: ले
1: हेलो,
0: या
2: हेलो.
1: नमस्कार.
2: हाँ नमस्कार, मला हे विचारायचं होतं की ये जो कैंसर के बारे में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से घुटन से कैंसर ट्रिगर होता है क्या?
0: नहीं, चांगला प्रश्न विचारला तुम्ही. तुम्ही मराठीत सुरू केलं होतं, तुम्ही मराठीत बोलण्याचा प्रयत्न करतो. नाही, त्यांनी नाही होणार. तसं काही प्रूफ झालेलं नाही आहे की सायकॅट्रिक पेशंट्स किंवा ज्यांना सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स असतील त्यांना कॅन्सर होईल, असं नाही आहे. तसं नाही आहे,
1: जी
0: त्याच्यावर
1: बिल्कुल.
0: नाही.
1: लेकिन जो स्ट्रेस लेवल्स है
0: करेक्ट
1: आजकल, मतलब छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक, सब लोग स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं. तो
0: करेक्ट
1: स्ट्रेस लेवल्स या फिर वो लाइफस्टाइल पे ही हम आ जाते हैं. आखिरी दो
0: करेक्ट
1: मिनट हमारे पास बचते हैं,
0: या
1: तो लाइफस्टाइल किस तरह से होनी चाहिए कि हम कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से दूर रह सके?
0: हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आपकी रही
1: जी
0: तो आपके बहुत सी डिजीजेज आपसे दूर रहेगी,
1: जी जी
0: जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज. और अगर किसी कारणवश अगर कैंसर भी हो जाता है, पर अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आप बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर पाएंगे. वो हमने देखा है जो अभी जो एथलीट्स है जिनमें जीतने की क्षमता हमेशा रहती है
1: जी
0: वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं. बहुत से अपने पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हेल्दी पेशेंट्स थे पहले और उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो वो बहुत अच्छे तरीके से फाइट किए कैंसर को.
1: जी
0: तो हेल्दी रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा ओबेसिटी या लाइफस्टाइल चेंजेस, अल्कोहल, फास्ट फूड, ये सब मॉडरेशन में रहना चाहिए.
1: जी बिल्कुल. क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल की, तो कई बार ये होता है कि मैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल थी मेरी, फिर भी कैंसर हो
0: हो
1: गया. तो
0: गया
1: ऐसे में आप पेशेंट को क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से उनको
0: काउंसिलिंग.
1: पॉजिटिव नोट पर ले आते हैं?
0: मैं तो हमेशा यही कहता हूं, जब अच्छा होता है तब अपन भगवान को थैंक नहीं करते, जब
1: जी
0: बुरा होता है तो बोलता है मेरे साथ ही क्यों हुआ
1: जी
0: ऐसा.
1: जी जी
0: तो ऐसा नहीं करिए.
1: हाँ
0: तो अगर हो भी जाता है किसी कारणवश तो फाइट करना सीखिए,
1: जी क्योंकि
0: तो उससे इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर द ट्रीटिंग डॉक्टर एज वेल एज योर सेल्फ.
1: जी
0: सो
1: बिल्कुल.
0: माई एडवाइस वुड बी टू फाइट कैंसर टिल द एंड एंड हेल्प द डॉक्टर ऑल्सो टू फाइट इट.
1: बिल्कुल. श्रोताओं, आप सुन रहे थे HCG कैंसर हॉस्पिटल नागपुर. हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम. आज इस लाइव फोन इन प्रोग्राम के लिए हमें तकनीकी सहयोग मिला सचिन कोगने और सतीश कोडमलवार का.

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

किस्मत है। तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या?

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग

0: कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
1: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
1: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
0: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
1: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
0: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
1: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुडी और प्रमोद कुमार डुडी।
1: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
0: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
0: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
1: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन तथ्य कुछ और है
0: जी।
1: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
0: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
1: बताइए।
0: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
1: जी वो तो है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
0: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी,
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
0: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
0: जी,
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में

0: बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजी जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: जी जी यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे,
1: जी
0: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो यह है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
1: जी
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है। तो
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान के दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर

0: विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,
7: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
8: चलो चलो चलो
9: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
10: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया।

0: घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
0: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार

0: फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा
3: हाँ
2: इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
3: देखिए आप,
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
5: मेरा अच्छा, बेटा।
3: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा। हाँ।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार

0: हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, My grandfather was the gentlest with the goodness of his heart, most affectionate and sensitive individual. He was a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग
6: श्रोते हो, आताच आपण NCERT द्वारे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग ऐकला। हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला।
7: राधिका, किती वाट बघायची, चल ना लवकर।
8: अहो हो, आलेच।
9: कान लगे होते थे, दिल लगा होता था, बस आवाज सुन भारत हसता था रोता था।
8: आणि हे काय, कार चालवताना हा डेकचा आवाज, यामुळे लक्ष विचलित होतं हो।
7: अगं ऐक जरा, आता नव्याने प्रसार भारतीने वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म लॉन्च केलाय। या दूरचित्रवाणीचे 65 लाइव्ह चॅनल्स 12 जास्त भाषांमध्ये उपलब्ध आहेत। यात बातम्या, माहितीपट, इन्फोटेनमेंट, लाइव्ह TV स्ट्रीमिंग, फ्री टू प्ले गेमिंग सह विविध प्रकारची सामुग्रीही उपलब्ध आहे।
8: अरे वा, किती छान। मी पण आताच हा OTT प्लॅटफॉर्म आपल्या मोबाईल वरती डाउनलोड करते आणि माझ्या मित्र मैत्रिणींना सांगते।
9: न्यू रिलीजेस बॉलिवूड की न्यू थिंग भी है।
10: बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताच्या PV सिंधूचा दुसऱ्या फेरीत प्रवेश आणि मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या कारवाईत 2.5 किलोपेक्षा जास्त तस्करीचं सोनं जप्त। भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 नवीन न्यायाधीशांना पदाची शपथ दिली। सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनं केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारनं न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी दिली होती। त्यानुसार न्यायमूर्ती शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेव आणि अरुण पल्ली यांनी ज्येष्ठ वकील व्ही मोहना यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली। भारताच्या सरन्यायाधीशांबरोबर सल्लामसलत केल्यावर राष्ट्रपतींनी या नियुक्त्यांना मंजुरी दिल्याचं केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी समाजमाध्यमावर जाहीर केलं। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशांची संख्या सुधारणा अध्यादेश 2026 जारी केल्यानंतर ही नियुक्ती झाली। या अध्यादेशाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांची मंजूर संख्या

0: परिसर हा कार्यक्रम पुन्हा प्रसारित करण्यात आला. प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एअर ॲपसहित 558 किलो हर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. दुपारचे 2:15 वाजतात. दोपहर समाचार हिंदीतून बातमीपत्र दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होईल. आम्ही
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया. राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया. सरकार ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए. पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई. राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी. और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है. ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है. आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें.
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं. छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है. ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है. जिनमें प्रतिभा तो होती ही है, परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता. लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि

0: केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को ना भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश

0: डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और

0: और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्सवर दुपारचे 2:30 प्रसारित करीत आहोत नादब्रह्मांतर्गत शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। आजच्या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहात विद्या खांडवे यांचं गायन, राग वृंदावनी सारंग। विलंबित बंदिश तिलवाडा तालातनं बद्ध आहे। बंदिशीचे बोल आहेत आज बदरवा बाजो हिंदाल रंग। द्रुतबंदिश 3 तालात निबद्ध आहे। द्रुतबंदिशीचे बोल आहेत आये मोरे लाल घरया सखजी। त्यांना तबला साथ आहे प्रसून चॅटर्जी यांची आणि हार्मोनियम संगती केली आहे जयंत फडके यांनी। ऐकूया विद्या खांडवे यांनी गायलेला राग वृंदावनी सारंग।

0: थिंग इन आवर लाईफ.
1: करायलाच पाहिजे आणि नक्की तुला यश मिळेल पुढे नक्कीच. अजून अनुश्री, आप क्या बताओगे, आपको आकाशवाणी में आकर मुझसे बात करकर कैसा लग रहा है?
2: मतलब इन ये जो एक्सपीरियंस है इस समय पे, इसे शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, बट आई वुड लाइक टू जस्ट से कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. एंड मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप ऐसे और ज्यादा कॉम्पिटिशन एंड प्रोग्राम्स और ज्यादा कंडक्ट करें ताकि हम और बार आ सके आकाशवाणी में आपसे बात करने.
1: बिल्कुल बिल्कुल. बट आकाशवाणी ये नाम सुनकर आपको सबसे पहले क्या फील होता है या फिर क्या कनेक्ट होता है?
2: मुझे आकाशवाणी का नाम सुन के सबसे पहले मेरी नानी की याद आती है, बिकॉज मेरी नानी एक नॉर्मल ग्रोसरी शॉप चलाती थी इन माय विलेज. और मैं मेरे नानी के साथ में जब वेकेशन के लिए जाती थी, तो मैं उनको रेडियो पे आकाशवाणी के ड्रामा प्रोग्राम्स जो है वो सुनते हुए देखती थी. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मेरी नानी क्या सुन रही है एंड ये क्या चल रहा है. बट मैंने भी सुनना चालू किया एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. सो सबसे पहले तो मुझे मेरे नानी की याद आती है एंड आई थिंक कि मेरी नानी मुझे सुन के बहुत खुश होगी.
1: अरे बिल्कुल. साहिल, तू काय सांगशील, आकाशवाणी नाव ऐकताच तुझ्या डोळ्यासमोर काय येतं?
0: माझ्या डोळ्यासमोर म्युझिक सध्या जे इंडियन इंडियन्सला रिप्रेझेंट करते, इंडियन म्युझिक खूप आवडायचे लहानपणी. लहानपणीपासून मी ऐकत आलो, पण मला हे चॅनल्सचे नावं नव्हते माहीत. पण आकाशवाणी जे चॅनल आहे ते खूप प्रोत्साहित करत आहे इंडियन सॉंग्सला आणि इंडियाच्या बारेमध्ये.
1: मला एक सांग की हे जे तू कॉम्पिटिशन्स दिलं आणि अभ्यासही तुमचा सुरू आहे, इंजिनिअरिंग करताय, पण त्या व्यतिरिक्त कुठले हॉबीज तुझ्या आहेत का?
0: येस, माझे हॉबीज वगैरे आहे. मला लिहिणं खूप आवडते, म्हणून मी रायटर पण आहो LIF मध्ये.
1: अच्छा, आणि तू काय लिहिलंय आतापर्यंत?
0: तेच सिनॅरिओज वगैरे लिहिलंय बस.
1: अच्छा, क्या बात है. अनुश्री, आप क्या बताओगे, आपको पढाई के अलावा कुछ हॉबी वगैरह है?
2: हाँ, मतलब मुझे पढ़ाई के अलावा मुझे पोएट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है. एंड मैं ज्यादा से ज्यादा फ्री वर्स में लिखना पसंद करती हूँ. लाइक राइमिंग इज नॉट माय एक्सपर्टीज.
1: बट एक हाथ कुछ हमें अगर सुनाना चाहोगे तो प्लीज यू कैन.
2: ये मेरी एक पोयम है जो मैंने लिखी थी, अ गार्डन दैट क्वेश्चंस. एंड ये मेरे दिमाग में आ रहे जस्ट रैंडम क्वेश्चंस थे कि लाइक जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, लाइक कोई हमारा जो घर का इंसान है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो हमें उसके लिए कितना दुख होता है. वी एज बीइंग अ ह्यूमन ही हम किसी के यहाँ अगर दूर फ्यूनरल में जाते हैं तो उनके हमें अच्छा नहीं लगता. एंड ऐसे ही बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस थे, उसी के बारे में मेरी एक पोयम थी, अ गार्डन दैट क्वेश्चंस. नाउ बिगिन्स द सीजन ऑफ स्प्रिंग इन माई लाइफ, माई माइंड ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स. ईच फ्लावर कैरीज अ क्वाइट क्वेश्चन, सॉफ्ट एज अ सीक्रेट इन द विंड. व्हेन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, words slip away from me in this busy, noisy world. No one really sees my garden. Yet my soul walks away here happily, clueless, calm and content. One afternoon, lying on the grass, the flowers gently asked me, is life just a story being told? Is there a hidden world we cannot see? Are we only characters in someone else's dream? I had no answers, only silence. Another day under a lemon tree, they whispered again, is the world more than what we see? If mysteries are real, was all the science and learning we had done in vain? I still don't know, but maybe spring is not about answers. Maybe it's about blooming with questions and finding beauty, not knowing.
1: क्या बात है. ये जो फीलिंग्स आपने उस पोएट्री में डाली है ना, वो ट्रू फीलिंग्स है, ये समझ में आ रहा है. बट मुझे आपको ये पूछने में दिलचस्पी है अभी कि आकाशवाणी से अगर कुछ कनेक्ट करना चाहोगे और अगर आपको कुछ मौका मिला कि आकाशवाणी से जुड़ने का, तो आप किस सेक्टर में जुड़ना चाहोगे?
2: जी, मैं आकाशवाणी से फिर से अगर मौका मिले तो फिर से मैं कॉम्पिटिशन्स के थ्रू ही आना चाहूंगी.
1: साहिल, मला सांग, दोन कॉम्पिटिशन्स मध्ये तू विजेता झालेला आहे, म्हणजे दोन कॉम्पिटिशन्स मध्ये तू भाग घेतला आणि दोन्ही मध्ये तू विजेता झालेला आहे, पण प्रश्नमंजुषा सोडवताना काही वेगळा चॅलेंज तुला जाणवला का?
0: हो, मला आधी माहित नव्हतं, पण सगळ्यात मोठी हेल्प माझ्या मित्रांनी दुष्यांनी केली आहे, की त्यांनी मला सगळं काही एक्सप्लेन करून दिलं, सगळं काही जे आकाशवाणीच्या बारे जे मला माहित नव्हतं ते त्यांनी कळवून दिलं, आणि मग मी क्विझ मध्ये गेलो आणि बस जे होते ते टिक करून येऊन गेलो.
1: पण पुढे जर तुला चान्स मिळाला, संधी मिळाली की आकाशवाणीला तुला कनेक्ट करायचं

0: आहे, म्हणजे जुळायचं आहे, तर तुला कुठल्या सेक्टरमध्ये किंवा कुठल्या याच्यात जुळायला आवडेल?
1: एडिटिंग.
0: अच्छा,
1: एडिटिंग एडिटिंग करू शकतो मी. एडिटिंग मी केली पण आहे काही जागेमध्ये.
0: कशाचं एडिटिंग तू करत असतो?
1: स्कूल कॉलेज रिलेटेड रील्स.
0: साहिल, मला सांग की तुम्ही आता यंगस्टर्स आहात, तुम्ही वेगवेगळ्या माध्यमातून गोष्टी बघत असता, सोशल मीडिया झालं किंवा डिजिटल वेनी बघत असतात, जो बाहेरचं प्रायव्हेट माध्यम आहे आणि जे आकाशवाणी आहे, तुला फरक काय वाटतो?
1: जे सोशल मीडिया म्हटलं तर नाही का, ते व्हिज्युअल आणि ऑडिओ दोघी असतं. जे प्रमोट करायचं असलं तर काही, आणि रेडिओमध्ये एक स्पेशल व्हॉइस राहत तुमची असते आणि जे लोकांना कनेक्ट करतं.
0: नक्कीच. अनुश्री, आप क्या बताना चाहोगे, आपको क्या डिफरेंस लगता है डिजिटल माध्यम में और आकाशवाणी में?
2: मुझे ये डिफरेंस लगता है कि आकाशवाणी की जो स्पेशल प्लेस है वो हर जो ओल्ड जनरेशन है हमारी इंडिया की, उनके हार्ट में काफी स्पेशल प्लेस है. एंड डिफरेंस मेन ये है कि जो हमारे जो डिजिटल वर्ल्ड है, आई थिंक सो, वो अपनी खुद की प्रोग्राम्स हैं, अपना खुद का काफी ज्यादा प्रमोशन करने की कोशिश करते हैं. बट आकाशवाणी आई थिंक सो ग्लोबली एंड एज ए नेशन कनेक्ट भी करता है एंड ओवरऑल चीजों को प्रमोट करता है, हमारी खुद की बारे में हमको बताता है. एंड आई थिंक सो कि जब कोविड आया था तो मैंने काफी सुना था कि आकाशवाणी ने, जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं जा रही थी, वाईफाई नहीं जा रहा था, वहां पे रेडियो के थ्रू बच्चों को साइंस के बारे में पढ़ाया था एंड उनको काफी ज्यादा नॉलेज दी थी. एंड आई थिंक सो कि इतना ज्यादा स्पेशल प्लेस है आकाशवाणी का कि हम उसे बोल नहीं सकते, लाइक वी कैन नॉट पुट देम इन टू वर्ड्स. एंड आई थिंक सो कि स्पेशली थ्रू द प्रोग्राम जो हमारे कॉलेज में कंडक्ट हुआ था, जो न्यू जनरेशन है, जिसे हम जनरेशन जी भी कहते हैं, वो आकाशवाणी के बारे में जानने लगे वो प्रोग्राम्स की वजह से. बिकॉज मैंने भी हमारे नानी को ही सुना था, नानी को सुनते हुए सुना था आकाशवाणी रेडियो पे, बट उसके अलावा आकाशवाणी के बारे में हमें भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी.
0: हम यहाँ पे युवावाणी कार्यक्रम में है, तो हमारे जो युवा है तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगी?
2: मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि आपके पास में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी होगा देखा जाएगा, आपको बस उसे ग्रैब करनी चाहिए. एंड लाइफ में आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपको लगेगा कि बस खत्म ही हो गया है अब, पर ऐसा नहीं होता है. यू हैव अ रियली होल लाइफ अहेड ऑफ यू.
0: साहिल, तू काय सांगशील? जे आपले युवा श्रोते आहेत त्यांना तू काय सांगशील?
1: आय थिंक आय वॉन्ट से बी द जॅक ऑफ द ऑल ट्रेड्स. सब ट्राई करू लाइफ में, सब ट्राई करना चाहिए और मैं भी वही कर रहा हूँ.
0: क्या बात है, आम्हाला खूप छान वाटलं तुम्ही दोघे इथे आलात आणि तुमच्याशी गप्पा मारूनही खूप आनंद झाला. तुम्हा दोघांचे नागपूर आकाशवाणी तर्फे खूप खूप आभार.
1: थँक्स.
2: थँक्यू मॅम.
3: मित्रांनो, आताच आपण ऐकलीत AIR@90 अंतर्गत सूर्योदया कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी येथे आयोजित स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांची आपली मैत्रीण अंकिता पोहरकर हिने घेतलेली मुलाखत. तर मित्रांनो, वेळ झाली आहे आजच्या भागात इथेच थांबण्याची. मित्रांनो, तुम्हाला आपला आजचा युवावाणी कार्यक्रम कसा वाटला हे आम्हाला जरूर कळवा. त्यासाठीचा आमचा पत्ता आहे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सिव्हिल लाईन्स नागपूर 440001. त्याचबरोबर तुम्ही आम्हाला akashvani.nagpur@gmail.com या ईमेल आयडीवर ईमेलही करू शकता. तेव्हा आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा. आजच्या युववाणी कार्यक्रमाची निर्मिती नागपूर आकाशवाणी केंद्र, सादर करते अतुल साखरकर. तर मित्रांनो, अशाच एका नव्या विषयासह नव्या भागात भेटूया. तोपर्यंत मी तुमची रेडिओ मैत्रीण भार्गवी घेते तुमची रजा. धन्यवाद.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति शी चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत

0: श्रूयन्ताम् प्रवाचको नरेन्द्रदत्त सेमवालः आदौ मुख्यवार्ताः राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते अपि च वास्तविक विकासः तदैव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन आर्थिकेन शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अरबुद रूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम् केन्द्र सर्वकारेण आव्रजन नियमे निर्गतायाः अधिसूचनायाः अनुसारं अधुना 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवास समयं वर्धयितुम् इच्छन्ति तर्हि तेभ्य आव्रजनावधे समाप्तिपूर्वम् एव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्च न्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्य पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत् सर्वोच्च न्यायालये न्यायाधीशानां संख्या समेध्य 38 संजाता अपि च विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह जर्मनी देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मंत्री राष्ट्रपति च मारियो वोग्ट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेतृत्व भूतस्य डीपटेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ अथ वार्ताः विस्तरेण राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरं जागरूकः सक्षमश्च कारयति अद्य नवदिल्ल्याम् असौ जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः संबोधयति स्म अस्मिन् अवसरे सा प्रोक्तवती यत् वास्तविक विकासः तदैव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन आर्थिकेन शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा
0: सा रेखांकितवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्ति योजनया जनजातिवर्गेभ्य उच्चशिक्षायाः अवसराणां च आदानेन प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम् द्रौपदी मुर्मुवर्या अकथयत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां नैयून्यं न अस्ति अपि तु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्य उचित मार्गदर्शन प्रदानं च आवश्यकमस्ति
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न
0: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अरबुद रूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम् वित्तीय सेवा विभागः सार्वजनिक संदेश माध्यमे लिखिते संदेशे डिजिटल इति रूपेण धनादान प्रदानं स्वीकर्तुं नागरिकान् प्रति आभारं व्यक्तीकृतवान् अवधेयं यत् यूपीआई इत्येतत् प्रकल्पं विश्वस्य सर्वोच्चत्वेन रियल टाइम पेमेंट इति प्रकल्परूपेण समुद्भूतमस्ति यत् देशस्य डिजिटल अर्थव्यवस्थायाः आधारः वर्तते केन्द्र सर्वकारेण आव्रजन नियमे विदेश नियमेषु च संशोधनम् अधिसूचितमस्ति नियमानुसारं भारते 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवाससमयं वर्धयितुम् इच्छन्ति तर्हि तेभ्य आव्रजनावधे समाप्तिपूर्वमेव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति इतः पूर्वम् 80+100 दिनानाम् अवधे समाप्त्यानन्तरं चतुर्

0: उत्पादनमा भारी वाढ आणि दमदार उत्पादन हवं असेल तर आहे एक उत्तम खत, किसान शक्ती निर्मित भारत एनपीके 515010 युरिया शक्ती।
1: होय, किसान शक्ती निर्मित भारत एनपीके 515010 युरिया शक्ती, ज्यामध्ये आहे नायट्रोजन, फॉस्फेट, गंधक आणि कॅल्शियम, जे पिकांच्या वाढीत आणि उत्पादनात लक्षणीय वाढ करते।
0: सर्व प्रकारच्या पिकांसाठी उपयुक्त खत, प्रधानमंत्री सबसिडी सह उपलब्ध खत आणि विश्वासार्ह, आजच आपल्या जवळच्या कृषी केंद्राशी संपर्क करा आणि आजच किसान शक्ती निर्मित भारत एनपीके 515010 यूरिया शक्ति बुक करा।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: स्वतरायचे पुन्हा पावसाला।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्चन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन

0: पार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: का कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3-4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2-3 ब्रांचेस आल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद

0: अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
1: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: hikes ahead of the next budget cycle.
1: Many of the states are having a problem because of some freebies, what we call as, and because of the freebie, they do not have much resources, so they rely on the market borrowing to provide money for a different expenditure. So there we are finding that that's a really concern on that side. At the same time, we should also remember that this year, because of the reduction in central excise in the month of March, there is expectation that the central excise collection or the overall collection will go down, but the fertilizer subsidy will go up. So you have the central finance and you have the state finances. So combination of these two are also something the market is slightly thinking about. So when an investor going to the market, it will have certainly in mind that what kind of financial strength a central government has or the state government.
0: The RBI also suggests, Shishir, that there should be a continued focus on improving access to credit for MSMEs. What practical policy or operational steps will most effectively close the MSME credit gap?
1: So if you see MSME thing, the government has just come out with the fifth version of ECLGS, which is the Emergency Credit Guarantee Line Scheme. And the scheme, which was announced on 5th of May, as approved by the cabinet, has seen a very good response. That means the MSMEs are looking for financial support from the organized sector. And that is also going to help in that bringing down the cost of operation. Because if you are going to the unorganized sector for financing, that will, your cost of operation will go up. Already there is an issue of competitiveness. So if the cost of operation is up, that competitiveness will also be impacted. So MSME financing is something very, very important thing. And the good news is that more and more banks are encouraging their people to go and lend money to the MSME. And of course, those MSMEs which are really what we call as an eligible MSME or financially better position or their repayment record is better, we are finding them that the banks are ready to pay that. And if I go by the last 5-7 days, many of the bank MDs have said that we have got 600 crore rupees, 700 crore rupees worth of application from MSME. So even if we take 10 people are talking about 700 crore each, that means 7,000 crore worth of loan going to be dispersed among the MSME.
0: Thank you, Shishir. Those were very clear and actionable insights. And to our listeners, the RBI's annual report is more than statistics. It maps risks and opportunities that affect loans, savings and the wider economy. Appreciate your perspective and your time for us. Thank you very much.
1: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on key takeaways from RBI's annual report 2025-26. The participants were Shishir Sinha, economic analyst, and Rajesh Lekh, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app News on AIR.
3: Money Talk. आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
4: मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में, जिसने शहरों और कस्बों में काम करने वाले रेहड़ी पटरी वाले छोटे विक्रेताओं की मदद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राजेश कुमार जी, जो जनरल मैनेजर हैं सिडबी के, उनसे बात करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: राजेश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आम लोगों के समझने के लिए कि ये पीएम स्वनिधि योजना आखिर है क्या और इससे रेहड़ी पटरी वालों को खास तौर पर क्या फायदा मिलता है।
5: पीएम स्वनिधि योजना बेसिकली एक लोन प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई योजना थी, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से 3 चरणों में लोन मिलता था। पहला लोन 10,000 का था, दूसरा 20,000 का और तीसरा 50,000 का। इस लोन के साथ साथ उनको इंटरेस्ट सब्सिडी थी, 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता था। और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब है QR कोड के थ्रू पेमेंट लेना या डिजिटली पेमेंट करने पे 100 रुपए तक प्रति मंथ का इंसेंटिव था
4: जी।
5: अब उसके अलावा 400 रुपए का और इंसेंटिव ऐड हो गया है, जो कि बल्क ट्रांजेक्शन परचेज करने पे उनको मिलता है। इसके अलावा जो सरकार की 8 वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनसे जोड़ने की योजना थी और उनके स्किल के डेवलपमेंट करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम था।
4: तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस योजना को करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है खासतौर पर कोरोना

0: बाद छोटे दुकानदारों के लिए योजना कितनी मददगार साबित हुई होगी?
1: ये मददगार कितनी ज्यादा थी ये आप इसके नंबर से समझ सकते हैं। अभी तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में लोन मिल चुका है और करीब 17,800 करोड़ के लोन, करीब 1,13,00,000 लोन दिए जा चुके हैं। तो इसका विस्तार पूरे भारत में था, सारे स्टेट यूटीज में स्कीम में अर्बन एरियाज में इसके लोन दिए गए और लोगों को काफी सहायता हुई, इसलिए कि उनके पास उसमें कार्यशील पूंजी खत्म हो गई थी, बिजनेस को रिस्टार्ट करने के लिए उसमें पैसा चाहिए था
0: जी।
1: बट गरीब लोगों को पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, कोरोना खत्म होने के बाद भी अभी तक चल रही है और उसका डिमांड है, लोगों में इसका काफी यूटिलिटी दिख रहा है
0: जी। राजेश जी, अहम चीज जो इस स्कीम में है कि वो एक बिना गारंटी के एक छोटा लोन मिल जाता है, तो ये कितना बड़ा फायदा होता है रेड़ी पट्टी वाले लोगों के लिए और ऐसे लोग जो साहूकारों के पास जाते थे पहले लोन लेने के लिए या पैसा कर्ज लेने के लिए और उसमें उन्हें काफी लंबा ब्याज भी चुकाना पड़ता था, तो ये खासतौर पर उनके जीवन स्तर में किस तरह का एक सुधार आप देखते हैं?
1: सुधार दो रूप में आप देख सकते हैं। एक तो वही अमाउंट अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से मनी लेंडर से लेते थे तो काफी ज्यादा ब्याज देना पड़ता था
0: जी,
1: जो उनके प्रॉफिट को कम करता था। दूसरा, चूंकि काफी हाई रेट कॉस्ट पे लोन मिलता था तो वो एक छोटा अमाउंट लेते थे, जितना बेसिक जरूरत होती थी उतनी ही लेते थे क्योंकि काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था। स्कीम में रिजनेबली गुड अमाउंट, जिसको कहते हैं कि पहले 10,000 रुपया जो अभी बढ़ के 15,000 रुपया हो गया, फिर 25,000 रुपया, फिर 50,000 रुपये का लोन मिलता है, तो उनको सिर्फ इतना बिजनेस चलाने के लिए बल्कि बिजनेस बढ़ाने के लिए सुविधा हो रही है और इसकी वजह से उनका ओवरऑल इनकम इसलिए बढ़ रहा है कि उनके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है
0: जी।
1: तो दोनों रूप से फायदा हुई और हमने इम्पैक्ट स्टडी कराया, दो स्टडी कराया था, तो उसमें निकल के आया कि इनका इनकम जो है करीब करीब 20% से एनुअली बढ़ रहा है जिन्होंने इसके अंदर लोन लिया है। तो इसका दोनों वजह से है, कॉस्ट कम होना और बिजनेस का बड़ा करना।
0: कोई एक उदाहरण जो आपके जहन में ताजा हो रहा हो इस समय बात करते समय कि किसी के जीवन स्तर में आपने सुधार देखा हो, क्या काम करता था वो व्यक्ति?
1: बहुत लोगों ने बिजनेस को बड़ा किया, पहले थोड़ा सा क्वांटिटी रखते थे, जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो वो बताते हैं कि चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाले हो या आर्टिफैक्ट्स वाले हो, उनका दायरा बढ़ गया, उनका स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ गया और उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। कुछ ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया कि पहले आप सिर्फ फल बेच रहे थे, अब उसका आप जूस भी बेच रहे हैं या कट फ्रूट फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, सिर्फ आप मछली बेचते थे अब मछली को जो है सो फ्रिज में रख रहे हैं तो उसको ज्यादा समय तक बेच पा रहे हैं या फिर उसको आप प्रोसेस करके बेच रहे हैं। पहले आप छोटी आय के आपके पास पूंजी थी तो आप छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स खरीदते थे, अब जब ज्यादा पैसा है तो बड़े बड़े महंगे आर्टिफैक्ट्स भी खरीद के आप दुकान में रखते हैं। तो हजारों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, आपको बता देंगे लोग कि कैसे उनके बिजनेस को बढ़ावा मिला है इससे।
0: आप लोगों को कोई चुनौतियां भी सामने आई जब स्कीम को आप लोगों के बीच लेकर के गए, उनका रुझान कैसे था? क्योंकि आज तो नंबर्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं लेकिन शुरुआती दिनों में क्या माहौल था?
1: शुरुआती दिनों में डिमांड था, इसलिए कि कोरोना के कारण लोग काफी अफेक्टेड हुए थे, उनको पूंजी चाहिए थी और सरकारी जो मशीनरी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूएलबीज हो, अर्बन लोकल बॉडी, मतलब जो शहर का जो लोकल निकाय है, उन लोगों में भी रुचि थी। बट एक मुश्किल जो थी इनको बैंक तक ले जाना, और बैंकों में भी एक थोड़ा सा ये मानसिक रूप से ये होता है कि इतने गरीब लोगों को लोन देना वापस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शुरुआती एक उलझन थी लोगों के दिमाग में, एक दुविधा थी कि ऐसा सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट बहुत जल्दी ये साबित हो गया कि ये काफी सक्सेसफुल है और लोग लोन चुका रहे हैं, तो उसके बाद ये पीछे मुड़ के इस स्कीम ने नहीं देखा।
0: ये वाकई खासतौर पर बैंकों के लिए भी दिक्कत होती है कि अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो वापस आएगा नहीं आएगा, ये चिंता बैंकों के लिए बड़ी होती है। तो इस स्कीम में क्या कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है जरा भी कि नहीं लोगों की तरफ से इंतजार हो कि नहीं मेरा पैसा माफ कर दिया जाएगा ऐसा कुछ, या वो अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए तुरंत ही लोन का भुगतान करने में सबसे आगे बढ़कर अपना काम करते हैं?
1: मैंने नहीं देखा कभी कि किसी ने इंतजार किया हो कि उसका लोन माफ हो जाए, लेकिन चूंकि गरीब लोग हैं तो उनके जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जेन्युइन परेशानियां आती रहती हैं, वो हेल्थ का इश्यूज हो, बिजनेस का इश्यूज हो, आपके इलाके में बाढ़ आ गया, आपके गांव में स्थिति आपदा हो गई, गर्मी है, कुछ ही कारण से आपका बिजनेस, बारिश हो गई बहुत ज्यादा तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया, तो बहुत सारे कारणों से लोग ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं। बट ऐसा मैंने नहीं देखा जहां पर कि उनके पास नियत नहीं हो चुकाने की, और इस स्कीम में इनबिल्ट इंसेंटिव है, आप पहला लोन पे करेंगे तो दूसरा बड़ा लोन मिलेगा, दूसरा लोन प्रीपे करेंगे तो तीसरा और बड़ा लोन मिलेगा, आप तभी लेंगे लोन जब आपको जरूरत है, लेकिन आपको ये पता है कि जब जरूरत है तो वो लोन मिलेगा
0: जी,
1: तो इसलिए लोगों की रुचि है लोन को लेने में और रिपे करने में
0: जी। जाहिर है, तो मतलब कर्ज चुकाएंगे तो अपने कारोबार को बढ़ाने की रुचि लोगों में रहती ही है और

0: उसका एक इंसेंटिव भी मिलता है कि अगर आपने लिया हुआ कर्ज समय पर चुका दिया तो आपको और ज्यादा कर्ज मिलेगा। डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव की भी आपने बात कही थी, वो किस तरह से होता है और पिछले 6 सालों में लोगों ने इसमें किस तरह का रुझान दिखाया?
1: डिजिटल इंसेंटिव है, अगर आप जैसे ग्राहक से अपने पैसा जो है सो QR कोड के थ्रू ऑनलाइन लेते हैं तो उसके लिए हम इंसेंटिव देते हैं, या आप जो अपनी पेमेंट करना है जो आप खरीद करते हैं उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, पर्सनल हो या बिजनेस एक्सपेंसेस हो। तो एक तो रिटेल का हम देते हैं जो साल में मैक्सिमम 1200 रुपए तक मिल सकता है, 100 रुपए प्रति मंथ। दूसरा एक अभी शुरू किया गया है जिसमें क्वार्टर में हम 100 रुपए देते हैं अगर वो स्ट्रीट वेंडर 2000 रुपए से ज्यादा का परचेज करता है और ऑनलाइन पेमेंट करता है। तो इस तरह से आप साल में 1600 रुपए तक डिजिटल इंसेंटिव के रूप में पा सकते हैं जो आपके ऑलमोस्ट लोन के इंटरेस्ट का कॉस्ट सब्सिडाइज कर देता है।
0: जी, महिलाओं के लिए इस योजना में कोई खास पहल देखने को मिली?
1: महिलाओं की भागीदारी इस स्कीम में काफी ज्यादा है, अबाउट 45% जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो महिलाएं ही हैं। तो दो की इस स्कीम में अलग से कोई उनके लिए इंसेंटिव का प्रोविजन नहीं किया गया था, समरूप से ये स्कीम सबको बराबर रूप से सहायता प्रदान कर रहा है। लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में बिजनेस में महिलाएं हैं और स्ट्रीट वेंडिंग में खास करके उनका योगदान दिखता है तो उनकी भागीदारी वो हमारी स्कीम में भी दिखती है।
0: एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जब हम अपने आसपास कारोबार में सुधार देखते हैं तो उससे उन लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है पूरी तरह से। एक तरह से अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें आप इस तरह की योजनाओं का क्या फायदा होता देखते हैं?
1: अर्थव्यवस्था को फायदा ये है कि जैसे 17,800 करोड़ ये फॉर्मल लोन्स दिए गए, ये पैसे कभी इनफॉर्मल सेक्टर से लिए जाते अब ये फॉर्मल सेक्टर से हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है और आगे बाहर से लोन लेने में सुविधा होगी। इनफैक्ट हमारे स्कीम में जो स्टडी है उसके हिसाब से 30% से ज्यादा लोगों ने अभी ही स्कीम से बाहर बैंकों से लोन लिया है, फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, ये फायदा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, जब आपका इनकम लेवल इम्प्रूव होता है तो आपकी सबसे पहली इच्छा होती है कि अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड में जहां जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे जरूरी आपको होता है उसकी बेसिक सुविधा की उन्नति कर सके, सुधार कर सके। वो आपके घर का हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई हेल्थ का इश्यू हो, जिस घर के लिए अलग अलग चीजें क्रिटिकल होंगी लेकिन जहां जो क्रिटिकल है वहां वो उस पर एक्सपेंड करते हैं, अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये भी हमारे इम्पैक्ट रिपोर्ट में निकल के आया है कि आधे से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
0: आपने इम्पैक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया तो उसमें क्या क्या पैमाने रखे थे आप लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए?
1: एक तो हम देखना चाहते थे कि इनकम में क्या इम्प्रूवमेंट है, दूसरा ये देखना चाहते थे कि उस इम्पैक्ट उनके लिविंग्स पे आता है कि नहीं। तो 4 बेसिक पैरामीटर्स थे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उनके घर का ठिकाना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का और परिवार का हेल्थ और खाने पीने का, एक न्यूट्रिशन जो एक बेसिक आप कहते हैं अच्छा भोजन रिलेटिवली वो मिल रहा है कि नहीं, कि इन 4 पैरामीटर पे स्टडी किया गया था।
0: तो क्या परिणाम इसके निकल के आए? क्या लोगों के स्तर में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला या एक नोशनल इंक्रीज जिसे कहते हैं कि एक मामूली फर्क नजर आया?
1: उस ढंग से उसको क्लासिफाई नहीं किया गया था उस रिपोर्ट में कि कितना अमूलचूल है। ये अमूलचूल तुरंत हो भी नहीं सकता
0: जी,
1: लेकिन हर एक कदम जो कि सही दिशा में बढ़ता है वो इम्पोर्टेंट है, उस तबके के लिए खास करके काफी मायने रखता है।
0: इस योजना का विस्तार भी किया गया है, आपको क्या लगता है किस तरह से और ज्यादा फायदेमंद होगा ये लोगों के लिए और नए लोग भी स्कीम में शामिल होंगे?
1: अभी तक ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए था जो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, अब हम इसको सेंसस टाउन में एंड पेरी अर्बन एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक तो वो फायदा हो रहा है और दूसरा स्कीम में अब क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है, दूसरा फायदा है लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए है। और तीसरा हम उनके स्किल में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनको एक बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उस पर भी हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनका हैंड होल्डिंग कराना, उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है।
0: सर, आपसे एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे लोन लेने वाले थे उनमें से कितने लोग बड़े लोन की तरफ बढ़े हैं, ऐसा कोई आंकड़ा अगर आप हमारे साथ साझा कर सके?
1: जैसे हमारा जो स्कीम है जो छोटे लोन है जिसको हम फर्स्ट लोन कहते हैं, तो उसमें करीब अभी आज की तारीख में 75-75.5 लाख लोगों ने लोन ले रखा है।
0: बिल्कुल,
1: उसमें से करीब करीब 47 लाख से थोड़े कम लोगों ने रिपे कर दिया पूरी तरह से। या तो जो जिन्होंने फर्स्ट लोन रिपे कर दिया है वो सेकेंड लोन के लिए एलिजिबल है, उनमें से करीब 29 लाख लोगों ने सेकेंड लोन लिया है और जो 13.5 लाख लोगों ने लोन रिपे कर दिया है उसमें से करीब 8 लाख लोगों ने थर्ड लोन लिया है। एक तरह से माना जाए कि काफी ज्यादा जो रिपे कर चुके हैं उनमें से मोर देन 60-70% लोग जो है सो नेक्स्ट लोन लेते हैं।
0: पिछले हम बात करते हैं स्कीम के बेनिफिशरीज से भी।

0: हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विष्णु शंकर भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विष्णु जी, सारनाथ के रहने वाले हैं आप, और क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में इस योजना का लाभ लेने के बाद? बोलिए राजेश जी।
1: सर, हम लोग तो रेडी वाले हैं, सारनाथ म्यूजियम पे ठेलिया पे दुकान लगाता हूँ मैं सर
0: जी।
1: और जो मेरा कार्ड है काफी पुराने समय से था जी, कोरोना काल जब आया तो हम लोग लगातार 2 साल के लगभग बंद किए हुए थे, दुकान फिर से शुरू की तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी सर। तो उसी समय सर पीएम सुनिधि जो आई, ये सर अच्छा हुआ कि पहली बार तो बैंक हम लोग को सम्मान मिलने लगा, फिर उसके बाद जो हम लोग उसमें रजिस्टर करा कर 10,000 का लोन लिए, जब हम लोग उसकी एक्टिविटी करने लगे तो हम लोग को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा। पहली बार तो उसमें मंथली देना पड़ने लगा, फिर उसके बाद हम लोग जब 10,000, 20,000, 50,000 का लिए तो बैंक ऑटोमेटिक आज हमारी सर 4 लाख की लोन की हुई है। उसमें ओडी अकाउंट होती है सर, तो उससे सर हमको बहुत ही सहायता मिला और उसके साथ साथ पीएम सुनिधि साथ साथ हमारे फैमिली मेंबरों को भी सर जोड़ा गया है।
0: बिल्कुल। तो विष्णु जी बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे। तो राजेश जी, अभी आपने विष्णु जी को सुना, वो अपनी बात बता रहे थे कि किस तरह से जो है उन्हें इस योजना का फायदा मिला और किस तरह से उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। तो और भी जो लोग इस तरह की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं या उनके मन में कोई डर है, कोई शंका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: उनको मैं कहूंगा कि आप अपने शहर के यूएलबी बॉडी होता है, आप उनसे संपर्क, और अगर खुद से कर सकते हैं तो हमारे पीएम स्वनिधि के वेबसाइट पे जाकर के या मोबाइल ऐप से डायरेक्टली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट है तो, और नहीं है तो वेंडिंग के लिए पहले अप्लाई करें। और स्ट्रीट वेंडिंग और लोन अप्लीकेशन अब कंबाइन रूप से एक साथ होता है, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो पहले आप यूएलबी आपका स्ट्रीट वेंडिंग का कंफर्मेशन करेगा, जिसको हम LOR कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और जब आपका LOR यूएलबी अप्रूव कर देगा तो फिर आपका एप्लीकेशन बैंक को चला जाएगा लोन के लिए।
0: तो राजेश जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपका।
3: अभी आप सुन रहे थे पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थी के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी।

0: आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपुकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम ट्रू मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म विब्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा है कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 38 रन से जीता, वहीं दूसरा मैच इंग्लैंड ने 26 रन से जीतकर श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking.
2: प्रसार भारतीच्या वेब्स ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एअर या ॲप सहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। नादब्रह्म कार्यक्रमात आज रतन मोहन शर्मा यांचं गायन, त्यांनी गायलेला राग गोरखकल्याण। विलंबित खेळाची बंदिश 1 तालात आहे, द्रुतबंदिश 3 तालात आहे। त्यांना तबल्याची साथ अतुल ताडे यांनी, हार्मोनियमची साथ अनंत केमकर यांनी केली होती। ऐकूया रतन मोहन शर्मा यांनी गायलेला राग गोरखकल्याण।

0: आता मला हे सांगा, पुढचं शिक्षण का घेऊ इच्छित आपण?
1: उच्च शिक्षण घेतल्याशिवाय माणूस समर्थ बनू शकत नाही.
0: समर्थ बनून काही मारामारी करणार आहेस की काय?
1: मारामारी नाही महाराज, पण अस्पृश्यतेविरुद्ध लढा देणार आहे मी. शिक्षण हीच माणसाची कवच कुंडलं असतात, आणि त्या कवच कुंडलांच्या सहाय्यानं कितीही मोठ्या प्रतिस्पर्ध्याशी तो लढू शकतो. उच्च शिक्षणाच्या सहाय्यानं मला माझ्या समाजावरील अस्पृश्यतेचा कलंक पुसून टाकायचा आहे.
2: आंबेडकर आंबेडकर, अरे किती अभ्यास करशील, किती जागशील? काल रात्री जाग आली आणि तुझ्या टेबलाकडे पाहिलं तरी तुझा दिवस जळत असतो.
1: नवल, तू सुखवस्तू आहेस, मी दुःखात गरिबीत वाढलोय. मला सुखविलास माहितीच नाहीत, करणार काय? अभ्यासात रमणं, विद्या संपादत संपादत आत्मोन्नती करून घेणं, एवढंच लक्ष माझ्यासमोर आहे.
2: आणि काय रे, मी जे काय ऐकलं ते खरं आहे का?
1: आणखीन काय ऐकलंयस माझ्याबद्दल?
2: अरे, कोलंबिया विश्वविद्यालयाच्या तल्लक विद्यार्थ्यांना तुझ्यात अब्राहम लिंकनचा निर्धार आणि बुकर टी वॉशिंग्टनची उद्योगशीलता आढळून आल्यानं ते तुझं प्रकट अभिनंदन करणार आहेत म्हणे. वा रे छुपे रुस्तम.
1: त्याचं असं आहे, कोणी आपलं कर्तव्य आत्यंतिक कळकळीनं करीत गेलं की कुणी मग त्याचं अभिनंदन करणारच. नवल, अरे तू पाहतोच ना, दररोज 18-18 तास मी अभ्यास करतो, आणि अशा अखंड तपश्चर्येनंतर प्रसन्न होऊन अशी अभिनंदनाची माळ आपणहून त्याच्या गळ्यात घालणार नाही का?
2: खरंच आंबेडकर, तू महान आहेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आहेस, ग्रेट आहेस. माझा तू परम मित्र आहेस याचा मला अभिमान वाटतो.
1: या या नवल भाटेना, या. आपण किती दिवसांनी आज असे भेटतो होत नाही?
3: शतकानुशतके स्पृश्य हिंदूंच्या गुलामगिरीत खितपत पडलेला सारा दलित समाज आपले मानवी हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी खडबडून उठला. वाज स्पृश्यांच्या पुढे दंड थोपटून उभा ठाकलाय. आंबेडकर, अहो तुमचीच ही किमया. पण एवढं सगळं करून देखील अजूनही देशाच्या दृष्टीनं तुम्ही
4: मैं विकास मेहरोत्रा. सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया. इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी. समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है. यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं. भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है. कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं. श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है.
5: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है. उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए.
4: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी. आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे. श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में

0: पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of 5 accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. Yesterday, 2 other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal. Days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of the border matter.
2: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and encroachment of no man's land in demarcated segments of the boundary, which are currently being mapped jointly. We have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of boundary matters. It should be clear to all concerned that there is no role for any third parties in a bilateral matter between India and Nepal.
1: Mr. Jaiswal said India also rejects the unwarranted references made in Pakistan-European Union joint statement regarding Jammu and Kashmir. Mr. Jaiswal said that the Union Territories of Jammu